0: सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9

0: पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है

ज्ञान ज्योति। मन स्वभाव से चंचल होता है, इसलिए उसे पूरी तरह रोकना नहीं बल्कि सही दिशा देना आवश्यक है। और जब हम कुछ समय ईश्वर स्मरण जप या ध्यान में लगाते हैं तो मन की भटकन धीरे धीरे

श्रद्धा मन को स्थिर करती है, भक्ति उसे पवित्र बनाती है और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है।

ईश्वर का नाम स्मरण केवल उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से संवाद है। ईश्वर के नाम का जाप जीवन की हर राह को प्रकाशमय बना देता है।

प्रभु सुमिरन से मन निर्मल होता है और निर्मल मन में ईश्वर का वास होता है। जब मन भटकने लगे तब प्रभु का सुमिरन उसे फिर शांति के तट पर ले आता है।

जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ जीवन को नई दिशा मिलती है और ईश्वर का आशीर्वाद स्वयं मार्गदर्शक बन जाता है।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप इस समय सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। प्रातः के 6:40 हुए हैं और कार्यक्रम को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ, एपिसोड नंबर 3।

संतों के समाज को आनंदमय और कल्याणकारी बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की है, जहां राम भक्त रूपी गंगा तथा ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होती हैं। मात्र कवियों तथा पंडितों की ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब आइए आपको जानकारी देते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित वरीले होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 7:05 पर हम हाजिर होंगे लेकर हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। 7:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संसार। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हिमाचल डायरी का आज का अंक लेकर हाजिर होंगे 8:30 पर। 8:35 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 9:28 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हमीरपुर। सुबह 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। 10:05 पर आप सुनेंगे लघु वार्ता। 10:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीत। 10:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। सुबह 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम मन की बात। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल मंडल। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। इस दौरान दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। दोपहर 3 बजे आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। शाम 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भजन संध्या। युवमंच कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:30 पर। शाम 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। गल तुसांदी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। रिड़ियां दी तान कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:05 पर। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इस दौरान 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम दिलांदे मीत पहाड़ी गीत। चांदनी रातें कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर और देर रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सुबह की इस सुहानी बेला में सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में। तो आइए करते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत एक प्यारी सी मुस्कान और आज के विचार के साथ। आज का विचार ये है कि जीवन सिर्फ घटनाओं का नाम नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के प्रति हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का भी नाम है। खुशी, दुख, उत्साह, गुस्सा, प्यार, निराशा, आशा और चिंता जैसी भावनाएं हमारे जीवन का एक स्वाभाविक सा हिस्सा हैं। लेकिन इन भावनाओं का संतुलन बनाए रखना जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण कला है। जब हम बहुत ज़्यादा खुशी में बहकर निर्णय लेते हैं या फिर गुस्से में आकर शब्दों का चयन करते हैं तो कई बार परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते। तो वहीं जब हम अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना सीख लेते हैं तो हम कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विवेक बनाए रखते हैं। भावनाओं का संतुलन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा ठहर कर विचार करें। जीवन में सफलता सिर्फ प्रतिभा या परिश्रम से ही नहीं मिलती, बल्कि भावनात्मक परिपक्वता भी उतनी ही जरूरी होती है। आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में मानसिक तनाव और भावनात्मक दबाव बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे समय में खुद के साथ कुछ पल बिताना, सकारात्मक विचारों को अपनाना, प्रकृति के पास रहना और अपने प्रियजनों से खुलकर बात करना भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और सही ढंग से व्यक्त करना ही संतुलन की कुंजी है। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर मन संतुलित है तो जीवन की हर चुनौती का सामना सहजता से किया जा सकता है। भावनाओं का संतुलन ना सिर्फ हमें सफल बनाता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। ये था आज का विचार और अब आइए सुनते हैं ये गीत।

0: ध्यान में लो सजना। और अब कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: इस अंतराल के बाद अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं आज के इतिहास की ओर। की स्थापना की गई जिसने देश में संचार व्यवस्था को एक नई दिशा दी। ये डाकघर तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कोलकाता में शुरू किया गया था। आर मिकी माउस का बोलता हुआ कार्टून द कार्निवल किड रिलीज किया गया, जिसने एनिमेशन की दुनिया में नई शुरुआत की। इसी कार्टून में पहली बार मिकी माउस की आवाज दर्शकों को सुनाई दी, जिसे वॉल्ट डिज्नी ने खुद दिया था। सन 1964 में मुंबई में इलेक्ट्रिक ट्राम ने अंतिम बार अपनी यात्रा पूरी की। करीब 90 वर्षों तक शहर की पहचान रही ट्राम सेवा के बंद होने के साथ मुंबई के परिवहन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका गुट निरपेक्ष आंदोलन का 109वां सदस्य राष्ट्र बना। ये सदस्यता रंगभेद नीति के अंत और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के बाद दक्षिण अफ्रीका की वैश्विक मंच पर नई पहचान का प्रतीक बनी। सन 2001 में पूर्व सोवियत देशों के राष्ट्रकुल का शिखर सम्मेलन मिन्स्क में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच सहयोग, सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। सन 2007 में सेप ब्लेटर तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष चुने गए। उनके नेतृत्व में विश्व फुटबॉल के विकास और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया। आगे बात करें तो आज ही के दिन सन 1725 में भारत की वीरांगनाओं में गिनी जाने वाली अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने न्यायप्रिय शासन, धर्मस्थलों के निर्माण और जनकल्याणकारी कार्यों से भारतीय इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त किया था। सन 1843 में मराठी रंगमंच में नई दिशा देने वाले प्रसिद्ध नाटककार अन्ना साहेब किर्लोस्कर का जन्म हुआ। उन्होंने संगीत नाटकों के माध्यम से मराठी थिएटर को लोकप्रिय बनाया और भारतीय रंगमंच में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1925 में हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक राज खोसला का जन्म हुआ था। उन्होंने कई यादगार फिल्मों का निर्देशन कर भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। सन 1942 में

0: प्रसिद्ध पत्रकार और आउटलुक के संस्थापक विनोद मेहता का जन्म हुआ था। वो भारतीय पत्रकारिता में अपनी निर्भीक लेखनी और निष्पक्ष संपादन शैली के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। साथ ही बात करें तो सन 1931 में भारत के विशिष्ट निबंधकार और साहित्यकार पूरन सिंह का निधन हुआ था। उन्होंने अपने विचारपूर्ण निबंधों और आध्यात्मिक लेखन से हिंदी और पंजाबी साहित्य को समृद्ध किया। सन 1988 में प्रसिद्ध समाज सुधारक, लेखक और शिक्षाविद संत राम बीए का निधन हुआ। उन्होंने समाज में समानता, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। और 2003 में प्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास का निधन हुआ था। उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को नई पहचान दी और भारतीय सिनेमा में मधुर एवं शास्त्रीय धुनों को लोकप्रिय बनाया। ये थी जानकारी आज के दिन के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की। और अब बात करते हैं आज के विशेष दिन की। आपको बताएं कि हर साल 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों जैसे कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 का विषय आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला है। ये अभियान ई सिगरेट, निकोटीन पाउच और सिंथेटिक निकोटीन जैसे भ्रामक उत्पादों के जरिए बच्चों और युवाओं को लुभाने वाली तंबाकू कंपनियों की रणनीति को उजागर करने पर केंद्रित है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमें ये याद दिलाता है कि जीवन प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। इसे स्वस्थ, सुरक्षित और सार्थक बनाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम आज एक छोटा सा संकल्प लें कि तंबाकू से दूर रहेंगे तो अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना होगा, तो आने वाले समय में हम एक ज़्यादा स्वस्थ और जागरूक समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए इस अवसर पर हम सभी मिलकर ये संदेश फैलाएं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और इसकी रक्षा करना भी हम सभी का कर्तव्य है। तंबाकू मुक्त जीवन सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये थी जानकारी आज के विशेष दिन की और आपको ले चलेंगे संगीत की ओर, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गोपी फिल्म से ये गीत आपने सुना और अब इस गीत के बाद आपको ले चलते हैं आज के समाचार पत्रों से आज की खास खबरों की ओर।

सबसे पहले बात करें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोर्ड की चेयरपर्सन के रूप में उपमा चौधरी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस नियुक्ति के साथ हिमाचल प्रदेश काडर की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी उपमा चौधरी देश की सभी बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में चेयरपर्सन पद संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी उपमा चौधरी के पास 35 वर्षों से ज्यादा का प्रशासनिक अनुभव है।

अगली खबर की बात करें तो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और इस पर सिर्फ अस्थाई विराम लगा है। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाएं भविष्य की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रही हैं। सेना प्रमुख शनिवार को महाराष्ट्र में पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के ऐतिहासिक 150वें पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि और समीक्षा अधिकारी के रूप में शामिल हुए। भारत ने वियतनाम को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस देने का समझौता किया है। बताया जाता है कि समझौते पर हस्ताक्षर पहले ही हो चुके हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है। सिंगापुर में आयोजित शांग्री ला डायलॉग के दौरान वियतनामी प्रतिनिधि के एक सवाल के जवाब में रक्षा सचिव ने ये जानकारी दी। ये पहली बार है जब भारत सरकार के किसी शीर्ष अधिकारी ने सार्वजनिक मंच से वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सौदे के पूरा होने की पुष्टि की है।

और अब खेल खबरों की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु और गुजरात टाइटंस आईपीएल 2026 के फाइनल में आज नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टकराएंगी, तो दोनों का लक्ष्य दूसरा खिताब जीतना होगा। मौजूदा चैंपियन आरसीबी लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के एलीट क्लब में शामिल होना चाहेगी। वहीं कप्तान रजत पाटीदार, दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा की सूची में शामिल हो जाएंगे। भारतीय महिलाओं को श्रृंखला के दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 26 रन के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही इंग्लैंड ने श्रृंखला में 1-1 की बराबरी कर ली। भारतीय स्पिनरों ने शनिवार को इंग्लैंड को 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन पर रोक दिया, लेकिन भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रेया केम्प को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये थी आज के समाचार पत्रों से आज की खास खबरें और खेल खबरें, और अब इन्हीं जानकारियों के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की लेते हैं आपसे इजाज़त। और एक बार फिर कहते हैं सुप्रभात हमीरपुर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर, FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 7:35 हुए हैं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संसार।

लोक संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हैं हम लेकर कार्यक्रम लोक संसार। तो आइए लोक धरोहर और लोक विश्वास के इस सफर में हमारे साथ चलिए और जानिए हिमाचल के लोक संसार के वो अनमोल रंग जो समय के साथ और भी गहरे हो गए। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में स्थित एक ऐसे प्राचीन और पवित्र मंदिर की यात्रा पर ले चलेंगे जो न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि इतिहास, संस्कृति और लोक परंपराओं की अनमोल धरोहर भी है। हम बात कर रहे हैं निरमंड में स्थित मां अंबिका देवी मंदिर की। हिमाचल प्रदेश को देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ की घाटियाँ, पर्वत, नदियाँ और गांव सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं और लोक संस्कृति को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन्हीं पवित्र स्थलों में एक है अंबिका देवी मंदिर, जो कुल्लू जिले के निरमंड क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर हिमाचल के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है और इसकी ऐतिहासिक महत्ता 7वीं शताब्दी तक मानी जाती है। निरमंड गांव को अक्सर छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। इन्हीं में अंबिका देवी मंदिर अपनी विशेष पहचान रखता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान परशुराम से जुड़ी कथाओं के साथ जुड़ा हुआ है। लोक मान्यताओं के अनुसार परशुराम ने अपनी माता रेणुका का वध करने के पश्चात प्रायश्चित स्वरूप यहां देवी की स्थापना की थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब हिमालय क्षेत्र में दैत्यों का आतंक बढ़ गया था तब देवी अंबिका ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर उनका संहार किया और धर्म की रक्षा की। उसी विजय की स्मृति में इस मंदिर की स्थापना हुई। माँ अंबिका को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। वो साहस, संरक्षण और मातृत्व के प्रतीक हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं और संकट के समय उनकी रक्षा करती हैं, और यही कारण है कि वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं का आगमन लगा रहता है। अगर मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो ये हिमाचल की पारंपरिक पहाड़ी शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिर का निर्माण लकड़ी और पत्थर की परतों को मिलाकर किया गया है। इसकी छत पर तांबे की परत चढ़ाई गई है और प्रवेश द्वार पर सुंदर ज्यामितीय आकृतियां और कलात्मक नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर परिसर में शिवलिंग, देवी देवताओं की अनेक प्राचीन प्रतिमाएं और अन्य धार्मिक प्रतीक भी मौजूद हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मां अंबिका की प्रतिमा विशेष आकर्षण का केंद्र है। ये काले रंग की प्राचीन प्रतिमा है जिसे स्वर्ण आभूषणों और पारंपरिक हिमाचली वेशभूषा से सजाया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है और इसकी पूजा सदियों से होती आ रही है। अंबिका देवी मंदिर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए भी विशेष महत्व रखता है। यहाँ एक प्राचीन ताम्रपत्र सुरक्षित है जो इस क्षेत्र के इतिहास पर प्रकाश डालता है। इस ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उस समय यहाँ विद्या, संस्कृति और वैदिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए विद्वानों को बसाया गया था। यही कारण है कि निरमंड क्षेत्र प्राचीन काल से ही ज्ञान और आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पत्थरों से बनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे जैसे श्रद्धालु ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हिमालय की शांत वादियां और प्राकृतिक सौंदर्य मन को एक अलग ही अनुभूति प्रदान करते हैं। चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ों की ठंडी हवाएं और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति में स्थानीय देवी देवताओं का विशेष स्थान है।
यहाँ के लोग देवी देवताओं को सिर्फ पूजा का विषय नहीं मानते, बल्कि उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग समझते हैं। विवाह, त्योहार, कृषि कार्य, सामाजिक आयोजन और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना परंपरा का हिस्सा है। अंबिका देवी मंदिर भी इसी जीवंत लोक परंपरा का केंद्र है। नवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचकर मां के दर्शन करते हैं। मंदिर परिसर भक्ति, श्रद्धा और उत्साह से भर उठता है। देवी के जयकारों और भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। स्थानीय लोकगीतों और पारंपरिक रीति रिवाजों के माध्यम से यहाँ की सांस्कृतिक विरासत भी जीवंत हो उठती है। अंबिका देवी मंदिर हमें ये संदेश देता है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं सिर्फ इतिहास के पन्नों में सीमित नहीं हैं, बल्कि आज भी हमारे जीवन को दिशा देने का काम कर रही हैं। ये मंदिर श्रद्धा, साहस, मातृशक्ति और लोक संस्कृति के संरक्षण का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ दर्शन ही नहीं करता, बल्कि हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी महसूस करता है।

जी, तो ये हमने बात की निरमंड में स्थित माँ अंबिका देवी मंदिर के बारे में, और अब आइए सुनते हैं ये एक लोकगीत।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
3: मेरी बुढ़िया के नाम।
4: पर दादी आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
9: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
10: लोक संसार कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब बात करेंगे जिला हमीरपुर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे एवं अंतिम चरण में शनिवार को जिला हमीरपुर की 77 ग्राम पंचायतों में लगभग 76% मतदान हुआ और मौसम के साथ जिले में मतदान के आंकड़े भी बदले हैं। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के अंतिम चरण के मतदान में महिलाओं ने लोकतंत्र के प्रति अपनी जागरूकता और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए पुरुष मतदाताओं की तुलना में 8.8% ज्यादा मतदान किया। आगे बात करें तो पिछले दो सप्ताह से जिले के जंगलों में धधक रही आग पर शनिवार को हुई बारिश ने काफी हद तक अंकुश लगा दिया। बारिश की फुहारों ने जहां तापमान में गिरावट लाई वहीं जंगलों में लगी आग को भी शांत करने में अहम भूमिका निभाई। इससे वन विभाग को बड़ी राहत मिली है। वन विभाग के अनुसार जिले की 70 बीटों में मौजूदा फायर सीजन के दौरान अब तक 33 आगजनी की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। इन घटनाओं में करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर नष्ट हो गई जबकि हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। आगे बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों के 355 पदों की बैच वाइज भर्ती के तहत हमीरपुर जिले में 18 पद भरे जाएंगे। इन 18 पदों के लिए 3 और 4 जून को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में साक्षात्कार लिए जाएंगे। ये थी जिला हमीरपुर से जुड़ी कुछ खास खबरें जो हमने आपसे साझा की। और कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं एक और लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संसार FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने

0: विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
3: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली, कांचल क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
4: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया।

0: शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में डूब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन नाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in

0: हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में सबसे पहले बात करें तो हिमाचल प्रदेश में चार नगर निगमों, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे आज आएंगे। प्रदेश के 91 विकास खंडों में सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला परिषद की 251 और पंचायत समिति सदस्य की 1769 सीटों के लिए पड़े मतों की गणना संबंधित बीडीओ कार्यालयों में की जाएगी। नगर निगम चुनावों की मतगणना निर्धारित केंद्रों पर करवाई जाएगी और परिणाम सुबह 10 बजे तक घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केवीके सुंदरनगर को 2026 के प्रतिष्ठित नास धानुका कृषि प्रसार उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। देश भर के लगभग 731 कृषि विज्ञान केंद्रों में सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में उभरा है। कुलपति डॉ. अशोक कुमार पांडा ने बताया कि ये सम्मान 5 जून को नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों के लिए समेटिव असेसमेंट 1 की डेटशीट जारी कर दी गई है। परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को तय कार्यक्रम के अनुसार तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा का समय सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। आगे बात करें तो किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपियो में 3 जून से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न राज्यों से 100 युवा प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें देश भर के राज्यों की संस्कृति और जीवन शैली की झलक दिखेगी। इसका मुख्य उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। ये युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना जगाने की बड़ी पहल है। कार्यक्रम में बिहार, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के युवा शामिल हैं। इन युवाओं को सीमांत क्षेत्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक परिस्थितियों का निकटता से जानने का अवसर मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी अंधड़ के बीच बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का दौर जारी रहा। शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, मंडी और धर्मशाला समेत कई जिलों में सुबह बारिश हुई। रोहतांग, धौलाधार और अन्य ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। बारिश और हिमपात के चलते प्रदेश के अधिकतम तापमान में 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश में इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। मौसम विभाग की ओर से शनिवार को जारी मानसून पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जून से सितंबर के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2026 में पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की वर्षा दीर्घावधि औसत का 90% रहने की संभावना है, जिसमें 4% तक कम ज्यादा होने की संभावना जताई गई है। जून के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है और वहीं अधिकतम तापमान कई क्षेत्रों में सामान्य से कम रह सकता है, लेकिन किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और ऊना जिलों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज होने के आसार हैं। हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 8:35 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: सुरक्षा की बात खड़ी। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

0: सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ओम शांति ओम, इस फिल्म का गाना के की आवाज में, विशाल का लिखा हुआ गाना, विशाल शेखर का संगीत। आज प्लेबैक सिंगर के को उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं।

अब आपको सुनवाते हैं दस फिल्म का गाना. फिल्म का नाम है दस. शान और के की आवाज़ें हैं. पंची जालौनवी के बोल और संगीत विशाल शेखर का.

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत

0: से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थे जवान अपने।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: दोस्तों, आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। धूम्रपान केवल उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है जो ये करता है, बल्कि आसपास के लोगों का भी इससे नुकसान होता है और ये मानव शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है। इसके जो प्रभाव होते हैं वो लगभग तुरंत ही शुरू हो जाते हैं या थोड़े समय के बाद में, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं की एक श्रृंखला जो है वो उत्पन्न हो जाती है। जीवन बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित होता है और जीवन की गुणवत्ता जो है वो घट जाती है। कुछ और भी इस विषय पर हम बातें करेंगे। अभी आपको सुनवाते हैं गैंगस्टर फिल्म का गाना, के आवाज़ में सईद कादरी के बोल, संगीत है प्रीतम का।

भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक बचना ए हसीनों इस फिल्म का गाना के और शिल्पा राव की आवाजों में अनविता दत्त गुप्तन का लिखा हुआ गाना विशाल शेखर का संगीत।

जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें सबसे पहले कुछ अल्पकालिक प्रभाव दिखने लगते हैं, जैसे कि हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, और इन तात्कालिक प्रभावों से हृदय प्रणाली पर दबाव पड़ता है और शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। कई धूम्रपान करने वाले लोगों में सहन शक्ति में कमी हो जाती है, लगातार खांसी और स्वाद और गंदगी अनुभूति में भी कमी होने लगती है। ये बात हम आज कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं। आयम कलाम फिल्म का गाना, के की आवाज़ में मानवेंद्र का लिखा हुआ गाना, अभिषेक राय का संगीत।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 9:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और चार नगर निगमों में हुए चुनावों की मतगणना जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए किए जारी। और चंबा जिला में पर्यटक वाहन दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और चार नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में हुए चुनावों के मतों की गणना आज सुबह 9 बजे शुरू हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जिला कांगड़ा के 54 जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। इसी दौरान जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता से।
1: मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला कांगड़ा के 54 जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। इसी दौरान ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। वहीं नगर निगम धर्मशाला और नगर निगम पालमपुर के चुनावों की मतगणना भी सुबह 9 बजे से आरंभ होगी। दोनों नगर निगमों में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हुआ था, इसलिए मतगणना भी ईवीएम के जरिए ही करवाई जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर डबल टीयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतगणना केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रत्याशियों और उनके अधिकृत मतगणना अभिकर्ताओं को ही निर्धारित नियमों के तहत प्रवेश दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: सिरमौर जिला में सभी विकास खंड मुख्यालयों पर मतगणना की जा रही है। मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला में आज जिला परिषद के 54 और पंचायत समिति के 312 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। विस्तृत जानकारी के साथ सिरमौर जिला संवाददाता।
2: सिरमौर जिला में सभी विकासखंड मुख्यालयों पर मतगणना की जा रही है। जिला में कुल 365 उम्मीदवार जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए चुनावी मैदान में है, जिनमें से पंचायत समिति के 143 पदों के लिए 312 और जिला परिषद के 17 पदों के लिए 54 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। मतगणना के लिए कुल 12 टेबल जिला मुख्यालय नाहन में लगाए गए हैं, जहां जिला परिषद के 2 वार्डों के अलावा पंचायत समिति के 12 वार्डों की मतगणना की जानी है। आकाशवाणी समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा।
0: इधर सोलन नगर निगम व जिला परिषद सोलन तथा पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती भी जारी है। मंडी जिले में जिले के सभी 36 जिला परिषद वार्डों, 14 विकास खंडों के अंतर्गत आने वाले 240 से अधिक पंचायत समिति वार्डों तथा मंडी नगर निगम के 15 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। विस्तृत जानकारी हमारे मंडी जिला संवाददाता।
3: जिले के सभी 36 जिला परिषद वार्डों, 14 विकास खंडों के अंतर्गत आने वाले 240 से अधिक पंचायत समिति वार्डों तथा मंडी नगर निगम के 15 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। जिला परिषद की 36 सीटों और जिला भर के 240 से अधिक बीडीसी वार्डों के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। वहीं मंडी नगर निगम के सभी 15 वार्डों में चुनाव लड़ रहे 42 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी आज होना है। मंडी नगर निगम में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और कई वार्डों में प्रभावशाली निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच सिमट गया है। नगर निगम मंडी में 15 वार्डों में इस बार कुल 42 उम्मीदवार मैदान में हैं। विभिन्न वार्डों में आरक्षण नियमों के तहत अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। जिले भर में मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और शुरुआती रुझानों के साथ ही समर्थकों व प्रत्याशियों की नजरें परिणामों पर टिकी हुई हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल देर सायं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवा, 3 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज चमियाणा, आईजीएमसी शिमला और टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आधुनिक ऑटोमेटेड लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इन प्रयोगशालाओं में खून के एक ही नमूने से कई तरह की जांच की जा सकेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान दिलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1987 से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कल नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस डिजिटल एप्लीकेशन का उद्देश्य देश भर के स्कूलों और कॉलेजों को तंबाकू मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, आघात और श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। सचिव ने बताया कि देश भर में अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, आयुष संस्थानों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में 2000 से अधिक तंबाकू मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। चंबा जिले के बैरागढ़ पांगी वाया साच पास मार्ग पर एक पर्यटक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई।

0: इसमें 7 पर्यटक व 1 चालक शामिल है। बेंगलुरु के ये सैलानी 29 मई को पर्यटन स्थल डलहौजी से साच पास बर्फ देखने निकले थे। अचानक कालावन के पास उनका वाहन गहरी खाई में जा गिरा। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि इस दुर्घटना का पता 30 मई को लगा और दुर्गम इलाके में पुलिस और राहत दल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त उपायुक्त चंबा मौके पर मौजूद हैं और राहत व बचाव कार्यों को संपन्न करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कल से 15 जून तक प्रदेश में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिला किन्नौर में भी कृषि विभाग तथा आत्मा परियोजना के माध्यम से विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिक ब्यौरा हमारे किन्नौर जिला संवाददाता से।
1: परियोजना निदेशक जिला किन्नौर डॉक्टर रमेश लाल ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता तथा जैविक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है जो स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कृषि ज्ञान पर आधारित है तथा खेती की लागत कम करने के साथ भूमि की गुणवत्ता सुधारने में भी सहायक है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जिले की विभिन्न पंचायतों और कृषि क्षेत्रों में किसान जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेत प्रदर्शन और समूह चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, बारिश के बीच तीसरे चरण में सर्वाधिक 80.81% मतदान। नगर निगमों, जिला परिषद, बीडीसी के नतीजे आज। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, अंतिम चरण में रिकॉर्ड 81% मतदान। पंजाब केसरी की सुर्खी है, ऊना में मोबाइल की रोशनी में मतदान, प्रदेश को मिले 1189 और जनप्रतिनिधि। जबकि दैनिक जागरण के मुताबिक, वर्षा के बीच जमकर बरसे वोट। अमर उजाला की एक अन्य खबर है, चंबा घूमने आए पर्यटकों की गाड़ी खाई में गिरी, चालक समेत 8 लापता। दिव्य हिमाचल लिखता है, चुराह के कालावन में 8 पर्यटकों की मौत की आशंका। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, बारिश से 14 डिग्री तक गिरा पारा, आज भी तूफान और ओले गिरने का अलर्ट, ओलों से ऊपरी शिमला में सेब की 40 डिग्री फसल बर्बाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और 4 नगर निगमों में हुए चुनावों की मतगणना जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए किए जारी। और चंबा जिला में पर्यटक वाहन दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 10:45 पर। नमस्कार।

एफ एम बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो हमीरपुर।

फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम हेलो हमीरपुर लेकर हाजिर हैं हम, और कार्यक्रम में हम सुनेंगे कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ।

हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, बस उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत होती है। बीता हुआ समय चाहे जैसा भी रहा हो, हर सुबह नई उम्मीदों का संदेश लेकर आती है। सकारात्मक सोच के साथ उठाया गया कदम नई सफलताओं का द्वार खोल सकता है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत आपने सुना, फिल्म थी क्योंकि इट्स फेट। अगला गीत आइए सुनते हैं 10 फिल्म से। इस गीत को गाया है आशा भोसले, उदित नारायण और शंकर महादेवन ने।

जी, असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है। हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो असफलता से सीख लेता है, वही सच्ची सफलता का स्वाद भी चखता है। जो अपने सपनों पर विश्वास करता है, वही उन्हें साकार करने की क्षमता भी रखता है। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना देती है, और सपनों की शुरुआत विश्वास ही तो होती है।

जी हाँ, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रेरणा हमें हमारे अपने विश्वास में छिपी होती है, और अपने ही विश्वास से हमें प्रेरणा मिलती है। दूसरों से प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन आगे बढ़ने की असली ताकत हमें हमारे भीतर से आती है। खुद पर विश्वास ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी होती है। जब तक प्रयास करना नहीं छोड़ते, तब तक हार कभी स्थायी नहीं होती। संघर्ष के क्षण कठिन जरूर होते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास उन्हें जीत में बदल सकते हैं। उम्मीद और मेहनत साथ हो तो हार भी एक दिन जीत का रास्ता बन जाती है। अनजाना अनजानी फिल्म से ये गीत आपने सुना, राहत फतेह अली खान और साथियों की आवाजें थी। अब आइए सुनते हैं हम तुम फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है सोनू निगम और साधना सरगम ने।

परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हौसले बुलंद हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। मुश्किल समय हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। दृढ़ संकल्प रखने वाले लोग हर बाधा को अवसर में बदल देते हैं और छोटे छोटे सकारात्मक कदम ही बड़े बदलावों की नींव रखते हैं। कार्यक्रम के आखिर में अब आइए सुनते हैं के श्रेया घोषाल और विशाल डडलानी की आवाजों में ये गीत। फिल्म है तारा रमपम।

इसी के साथ फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम हेलो हमीरपुर अब यहीं संपन्न करने की लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान

0: की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक प्रयासों की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। श्री लाइन व्यापारिक मंच को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंट तथा अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपये और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होगा और 15 जून तक लागू रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। वे कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कन्नूर में राज्यसभा सांसद सी सदानंद मास्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मेधा, करुणा और जन कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए आदर और सम्मान के साथ याद करता है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं 90 वर्षों के रंग आकाशवाणी के संग।

कार्यक्रम 90 वर्षों के रंग आकाशवाणी के संग लेकर हाजिर हैं हम, और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे उस माध्यम की जिसने ना सिर्फ सूचना और मनोरंजन का दायित्व निभाया बल्कि देश के सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक चेतना को भी सशक्त बनाया है, और ये माध्यम है आकाशवाणी। जी हाँ, जो पिछले 9 दशकों से करोड़ों लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। आकाशवाणी का इतिहास सिर्फ प्रसारण का इतिहास नहीं है बल्कि ये भारत की विविधता, संस्कृति, भाषा और लोक जीवन को जोड़ने वाली एक सशक्त कड़ी का इतिहास है। जब संचार के साधन सीमित थे तब रेडियो की आवाज़ दूर दराज के गांवों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और द्वीपों तक पहुंचती थी। लोगों के लिए ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और जागरूकता का विश्वसनीय स्रोत भी था। आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता रही है इसकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता। देश की अनेक भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण कर इसने भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। लोकगीत, लोक कथाएं, पारंपरिक संगीत और क्षेत्रीय कला रूपों को मंच प्रदान करके आकाशवाणी ने उन्हें नई पहचान दी। संगीत के क्षेत्र में आकाशवाणी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत और भक्ति संगीत को लोकप्रिय बनाने में इसकी भूमिका अविस्मरणीय है। अनेक प्रसिद्ध कलाकारों की आवाज़ पहली बार आकाशवाणी के माध्यम से ही देश भर के श्रोताओं तक पहुंची। संगीत प्रेमियों के लिए ये एक ऐसा मंच बना जहाँ कला और संस्कृति का सम्मान सर्वोपरि था। साहित्य के क्षेत्र में भी आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कविता पाठ, कहानी, नाटक, वार्ताएं और साहित्यिक चर्चाओं के माध्यम से इसने साहित्य को जन जन तक पहुंचाया। कई प्रतिष्ठित साहित्यकारों और कवियों की रचनाएं आकाशवाणी के प्रसारणों के माध्यम से घर घर तक पहुंची। रेडियो नाटकों ने तो एक अलग ही दुनिया रची जहां सिर्फ आवाजों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से कल्पना को सजीव किया जाता था। ग्रामीण विकास और जन जागरण के क्षेत्र में भी आकाशवाणी ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर आधारित कार्यक्रमों ने लोगों को नई जानकारी प्रदान की। किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम, महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणादायक प्रसारण और बच्चों के लिए मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम इसकी विशेष पहचान बने। आकाशवाणी ने पीढ़ियों को जोड़ा है। दादा दादी की यादों में बसने वाला रेडियो आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक है। तकनीक बदलती रही, संचार के नए माध्यम आते रहे, लेकिन आकाशवाणी ने समय के साथ खुद को निरंतर विकसित किया। FM प्रसारण, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से आज ये नए श्रोताओं तक भी पहुंच रही है। रेडियो की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आत्मीयता है। जब कोई उद्घोषक श्रोताओं को संबोधित करता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना व्यक्ति हमसे बात कर रहा हो, और यही आत्मीयता आकाशवाणी की पहचान रही है। इसकी आवाज में विश्वास है, अपनापन है और समाज को जोड़ने की शक्ति है। विशेष रूप से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में आकाशवाणी ने लोगों तक स्थानीय समाचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनहितकारी जानकारी पहुंचाने का काम किया है। स्थानीय कलाकारों, लेखकों और प्रतिभाओं को मंच देकर इसने क्षेत्रीय पहचान को सशक्त बनाया है।
अनेक लोक कलाएं जो समय के साथ विलुप्त होने की कगार पर थीं, उन्हें आकाशवाणी ने संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 90 वर्षों की इस यात्रा में आकाशवाणी ने अनगिनत यादें संजोई हैं। सुबह की मधुर प्रार्थनाएं, प्रेरक विचार, साहित्यिक कार्यक्रम, संगीत की स्वर लहरियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, इन सब ने श्रोताओं के जीवन को समृद्ध बनाया है। ये सिर्फ एक प्रसारण संस्था नहीं, बल्कि भावनाओं, स्मृतियों और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत दस्तावेज है। आकाशवाणी की 9 दशक लंबी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि इसने समय के साथ खुद को निरंतर परिवर्तित किया, लेकिन अपने मूल उद्देश्य जन सेवा, ज्ञान वितरण और सांस्कृतिक संरक्षण को कभी नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि बदलती तकनीक और संचार क्रांति के दौर में भी आकाशवाणी की प्रासंगिकता बनी हुई है। अगर हम भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश

समर्पण दिया है। विद्यार्थियों के लिए प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों ने सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाया। विज्ञान, पर्यावरण, साहित्य, इतिहास और संस्कृति जैसे विषयों पर आधारित कार्यक्रमों ने सामान्य श्रोताओं के ज्ञान को भी समृद्ध किया और कई पीढ़ियां ऐसी रही हैं जिन्होंने रेडियो के माध्यम से नई जानकारियां प्राप्त की और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। युवा वर्ग को प्रेरित करने में भी आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रतिभाओं को मंच देना, रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना और समाज के सकारात्मक उदाहरणों को सामने लाना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल रहा है। अनेक कलाकार, गायक, लेखक और प्रस्तुतकर्ता ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत आकाशवाणी के मंच से की और आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों को भी सदैव महत्व दिया है। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता, जल संरक्षण और सामाजिक सद्भाव जैसे विषयों पर आधारित कार्यक्रमों ने समाज को सकारात्मक दिशा देने का काम किया है। ये सिर्फ सूचना देने वाला माध्यम नहीं रहा बल्कि समाज को सोचने और बेहतर बनने की प्रेरणा देने वाला माध्यम भी रहा है। आज डिजिटल युग में भी जब जानकारी के असंख्य स्रोत उपलब्ध हैं, तब विश्वसनीयता सबसे बड़ा मूल्य बन गई है। आकाशवाणी ने अपने लंबे इतिहास में इसी विश्वसनीयता को अपनी पहचान बनाया है। वास्तव में आकाशवाणी की ये यात्रा हमें ये बताती है कि तकनीक बदल सकती है, माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन संवाद की आत्मीयता और संस्कृति से जुड़ाव कभी पुराना नहीं होता। और यही कारण है कि 90 वर्षों बाद भी आकाशवाणी सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की स्मृतियों, भावनाओं और सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बनी हुई है। नब्बे वर्षों की इस यात्रा में आकाशवाणी ने अनगिनत यादें संजोई हैं। आज जब हम आकाशवाणी के 90 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं, तब ये अवसर उन सभी उद्घोषकों, तकनीशियनों, कलाकारों, लेखकों और श्रोताओं को स्मरण करने का भी होता है जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाया है। और उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण ने आकाशवाणी को जन जन की आवाज बनाया है। जी, तो ये थी विशेष प्रस्तुति 90 वर्षों के रंग आकाशवाणी के संग। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 10:15 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं देशभक्ति फिल्मी गीत। शुरुआत कर रहे हैं इस देश प्रेम गीत के साथ।

देशभक्ति गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। इसी क्रम में आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं वीर ज़ारा फिल्म का ये देशभक्ति गीत।

0: जी श्रोताओ, उदित नारायण, लता मंगेशकर और गुरदास मान का गाया हुआ ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना, जिसे हमने लिया था फिल्म वीर जारा से। आइए एक और भक्ति गीत सुनते हैं जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने और फिल्म है पूर्व और पश्चिम। देशभक्ति गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से।
1: तुम्हें ये क्लब कैसे लगा?
2: अच्छा है, मगर चाचा जी
1: मुरझाए हुए चेहरे और खाली कर्म पर पल रहा। कैसी बात तुम्हारे?

जी श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं क्रांति फिल्म का ये देशभक्ति गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर, मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह, महेंद्र कपूर और साथियों ने।

जी श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण, सोनू निगम और साथियों ने।

अभी आप सुन रहे हैं ये देशभक्ति गीत जिसे हमने लिया है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से, और ये है आज के देशभक्ति फिल्मी गीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए इजाजत।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और चार नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में हुए चुनाव के मतों की गणना जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जिला कांगड़ा के 54 जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जा रही है। इसी दौरान जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरा हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता से।
1: मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला कांगड़ा के 54 जिला परिषद वार्डों के लिए डाले गए मतों की गिनती जिले के 18 ब्लॉक मुख्यालय में स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। इसी दौरान ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। वहीं नगर निगम धर्मशाला और नगर निगम पालमपुर के चुनावों की मतगणना भी सुबह 9 बजे से आरंभ होगी। दोनों नगर निगमों में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हुआ था, इसलिए मतगणना भी ईवीएम के जरिए ही करवाई जाएगी। प्रशासन ने इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर डबल टीयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतगणना केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल अधिकृत अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रत्याशियों और उनके अधिकृत मतगणना अभिकर्ताओं को ही निर्धारित नियमों के तहत प्रवेश दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: इस बीच नगर निगमों के चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए हैं। धर्मशाला नगर निगम के कुल 17 वार्डों में 11 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इनमें 6 सीटें भाजपा तथा 4 वार्डों में कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए हैं, जबकि 1 में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 1 में भाजपा की रेखा देवी ने कांग्रेस की हिमांशी, वार्ड नंबर 2 में भाजपा के शमशेर सिंह ने कांग्रेस के ओंकार चंद को, वार्ड नंबर 3 में भाजपा की आशा देवी ने कांग्रेस की सुदर्शना देवी को पराजित किया। वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस की नीनू शर्मा तथा वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस की शैलजा विजयी घोषित किए गए हैं। वार्ड नंबर 6 में भाजपा की करिश्मा, वार्ड नंबर 7 में भाजपा की आशु, वार्ड नंबर 8 में भाजपा की प्रेरणा ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 9 में आजाद प्रत्याशी, जबकि वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस के प्रत्याशी सुदेश शास्त्री ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग विजयी घोषित किए गए हैं। नगर निगम मंडी के कुल 14 वार्डों में 10 के नतीजे आ गए हैं, जिनमें 8 में भाजपा तथा 1 वार्ड में कांग्रेस तथा 1 में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से कल से 15 जून तक प्रदेश भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिला किन्नौर में भी कृषि विभाग तथा आत्मा परियोजना के माध्यम से विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिक ब्यौरा हमारी किन्नौर जिला संवाददाता से।
2: परियोजना निदेशक जिला किन्नौर डॉक्टर रमेश लाल ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता तथा जैविक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है, जो स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कृषि ज्ञान पर आधारित है तथा खेती की लागत कम करने के साथ भूमि की गुणवत्ता सुधारने में भी सहायक है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जिले की विभिन्न पंचायतों और कृषि क्षेत्रों में किसान जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेत प्रदर्शन और समूह चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल देर सायं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान को चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर के निकट बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके दृष्टिगत पिछले 3.5 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। चंबा जिले के बैरागढ़ पांगी वाया साच पास मार्ग पर एक पर्यटक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें 7 पर्यटक व 1 चालक शामिल है। बेंगलुरु के ये सैलानी 29 मई को पर्यटन स्थल डलहौजी से साच पास बर्फ देखने निकले थे। अचानक कालावन के पास उनका वाहन गहरी खाई में जा गिरा। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि इस दुर्घटना का पता 30 मई को लगा और दुर्गम इलाके में पुलिस और राहत दल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त उपायुक्त चंबा मौके पर मौजूद हैं और राहत व बचाव कार्य को संपन्न करवाया जा रहा है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान दिलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कल नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी श्रोताओं, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जल है तो कल है। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि ये कड़वी हकीकत है जिसे हम जितनी जल्दी गहराई से समझ लें, हमारा आने वाला कल उतना ही सुरक्षित होगा। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है।

हमारी नदियां हों, तालाब हों या जमीन के नीचे का जलस्तर, आज हर जगह पानी का संकट गहराता जा रहा है। प्रकृति ने हमें ये अनमोल तोहफा दिया है, लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी तरह से हम इंसानों पर है। जी हाँ, बूंद बूंद की कीमत हमें पहचाननी चाहिए। घर या आसपास कहीं भी बहते हुए नल या लीक होते हुए पाइप को तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि एक छोटा सा टपकता हुआ नल दिन भर में सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद कर देता है। धरती पर जीवन का हर रंग पानी से है। अगर हम आज पानी को बचाएंगे, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां एक खुशहाल और सुरक्षित कल देख पाएंगी।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। जी हां, इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के साथ सीधा संवाद करेंगे और आज है 134वीं कड़ी मन की बात कार्यक्रम की। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: आकाशवाणी है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले, आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई,
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
13: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
14: नमस्कार सर। नमस्कार।
15: नमस्कार सर।
13: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार

0: एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूँ कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले। हाँ
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया, जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ। एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था। एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया। एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है। एंड मैं वहाँ से नेशनल का सेलेक्ट हुआ। एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज़ स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली, जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था, तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी, मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियाँ करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज़ किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज़ किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
2: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज़ किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
1: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे। बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं, क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है। बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
1: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों अच्छा भागेंगे। तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पर जाके बैठ, वहाँ पर स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी।

मित्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टी

0: टीकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को, एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्डराज्यस्य राञ्चीनगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रिय मानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वान् अपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति, सा च अस्ति शत मीटर मित धावन स्पर्धा इत्येषा, अर्थात् शत मीटर मितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शत मीटर मिते धावनक्रमे राष्ट्रिय मानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतत् भद्रप्रदर्शनं कृतं तौस्तः गुरिन्दरवीरसिंहः, अनिमेष कुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री, अनिमेषवर्य नमस्कारः, गुरिन्दरवीरः भवतेऽपि नमस्कारः, सत्श्री अकाल च। अनिमेष गुरिन्दरवीरौ, नमस्कारः श्रीमन्। नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री, साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धिः समधिगतास्ति, भवद्युगलमपि विशेष प्रदर्शनम् अकरोत्। वयं सङ्गीते तु युगलप्रदर्शनं दृष्टवन्तः, परं समाह्वानेऽपि अधुना युगलप्रदर्शनं भवति। तत्र प्रथमम् एकः समाह्वानं पुरस्करोति, द्वितीयश्च तत् समाह्वानं स्वीकरोति, तृतीयवारं पुनश्च समाह्वानं करोति। अत्यन्तं रुचिकरः विषयः अभवत् भवतोः। अहमिच्छामि मन की बात इत्यस्य श्रोतारः अपि एतस्मिन् विषये भवतोश्च विषये जानीयुः। भवद्भ्यां यः पराक्रमः कृतः तं विषयमभिजानीयुः। अनिमेषः, नमस्ते महोदय, मम नाम अनिमेष कुजूरः। अहं 200 मीटर 400 मीटर इत्यनयोः राष्ट्रीय कीर्तिमानाङ्कन धर्ता अस्मि। अथ च महोदय, अहं मूलतः छत्तीसगढ़तः अस्मि, अधुना च अहम् ओडिशा पक्षतः क्रीडामि। विगत वर्षे अहम् एशियन अथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इत्येताभ्यां पदकानि समर्जितवान्। अथ अहम् एथलेटिक्स इत्येतां क्रीडाम् 121,000 वर्षे समारब्धवान्, यदा अहं विद्यालयीयम् अध्ययनं पूर्णं कृतवान्। अहम् अम्बिकापुरस्थितात् सैनिकविद्यालयात् उत्तीर्णः अभवम्। अथ पूर्वमहं पदकन्दुकं क्रीडामि स्म। कोविड् संक्रमणकाले मम पितरौ क्रीडितुं मह्यमवसरं कल्पितवन्तौ। बहिः गत्वा धाव, क्रीडवा इति तौ वदतः स्म। यदा च कोविड् संक्रमणकालः समाप्तिं गतः, तदा मम मित्राणि, यानि मया सह पदकन्दुकं क्रीडन्ति स्म, माम् आहूय विज्ञापितवन्तः यत् राज्यस्तरीयं मेलनं जायमानमस्ति, त्वं गत्वा सहभागितां कुरु। अहं च तत्र सहभागितां कृतवान्। मया एतन्न ज्ञातमासीत् यत् तत्र राष्ट्रस्तरीयं चयनं जायेत। अहं ततः राष्ट्रियदले चितः जातः। अथ अधुना अहं भारतस्य प्रातिनिध्यम् अन्ताराष्ट्रियस्तरे कुर्वन्नस्मि। प्रधानमन्त्री, भवतु, गुरिन्दरवीर किं प्रवर्तते? गुरिन्दरवीरः, नमस्ते श्रीमन्। मम नाम गुरिन्दरवीरः। अहं भारतीय नौसेनायां पेटी आफिसर इत्येतस्मिन् पदे कार्यरतः अस्मि। अहं च भारतस्य सर्वतः तीव्रधावकः अस्मि। अनतिचिरमेव अहं शतमीटर मितं धावनं 10.09 सेकेण्ड मिते काले समाप्य राष्ट्रियं कीर्तिमानाङ्कनं समर्जितवान्। अहं प्रथमः तादृशः भारतीयः अस्मि यः 10.1 सेकेण्ड इत्यवधेः अपि अल्पकाले एव धावनं पूर्णं कृतवान्। मम प्रयासः भवति अहं धावनपथे सैन्यवेशभूषायां चापि स्वस्य देशस्य सेवां कुर्याम्। मम पिता पितामहश्च उभावपि क्रीडकौ आस्ताम्। अस्माकं भारतीया संस्कृतिः एषा, यदा नाम किमपि पर्व भवति, यथा दीपावली, नूतनवर्षः वा, तदा वयं स्वगृहस्य स्वच्छतां कुर्मः। अहमपि तदा पितुः वैजयन्तीनां पदकानां च स्वच्छतां करोमि स्म। तत् कार्यं मह्यं बहु रोचते स्म। अहम् अतिप्रसन्नः भवामि स्म। तस्मिन् काले यदा अहं कामपि वैजयन्तीं स्वच्छां करोमि स्म, तदा अहं पृच्छामि स्म, एषा चल वैजयन्ती कुतः विजिता? एतत् पदकं कुत्र जितम्, एतत् चित्रं कदा आकृष्टम्, तदा तदा सः स्वकथाः मां श्रावयति स्म, सः विज्ञापयति स्म यत् अहं तत्र क्रीडितुं गतः, अहमेतत् राष्ट्रियपदकं जितवान्, अहं स्वदलस्य एतस्मिन् सन्दर्भे विजयं कारितवान्, ततः अहमपि तं प्रति कथयामि स्म यत् अहम् अपि कामपि क्रीडां कर्तुम् इच्छामि। सः प्रातः धावनार्थं गच्छति स्म, तदा अहमपि तेन सह गन्तुं प्रार्थयामि स्म, अनन्तरं सः मामपि नयति स्म। सः क्रीडावधौ यत् किमपि अधिगतवान् आसीत् तत् सर्वं मामपि शिक्षयति स्म। ततः मम रुचिवर्धनम् आरब्धम्। अहं युसेन् बोल्ट् इत्यस्य ध्वस्तं विश्वकीर्तिमानाङ्कनम् अपि अपश्यम्। एतत् सम्बद्धा एका विनोदकथा अस्ति। अहं टीवी इति दूरदर्शनं पश्यामि स्म, तदा मम माता दूरदर्शनयन्त्रं पिहितवती। सा उक्तवती, अध्ययनसमयः आसन्नः, अधुना भवान् पठतु। तदा अहम् उक्तवान्, भवतु नाम, भवती मह्यं दूरदर्शनं द्रष्टुम् अवसरं न प्रददाति। तादृशम् एकं दिनं भविष्यति यदा भवती एव दूरदर्शने माम् अन्वेक्ष्यति। यत् पश्यन्तु असौ गुरिन्दरः धावन् अस्ति, ममापि महती प्रसन्नता भवति यदा मम माता दूरदर्शने धावन्तं माम् अवलोकयति। प्रधानमन्त्री, बाढं बाढं बाढं, भवतः कथा तु विशिष्टा एव। गुरिन्दरवीरः, आम् महोदय, मध्यमवर्गीयः कुटुम्बः अस्माकम्। मम पिता अपि वालिबाल् इति क्रीडति स्म। गृहसमस्यानां कारणेन सः स्वकीयं क्रीडाक्रमम् अत्यजत्, तस्मात् तस्य स्वप्नाः अपूर्णाः एव आसन्। ततः स मयि एतान् स्वप्नान् अपश्यत्, अथ चिन्तितवान् यत् मम पुत्रः तान् पूरयिष्यति। अहमपि एतस्मिन् सन्दर्भे तेन सह संवादं करोमि स्म। मिल्खा सिंहः अतिपरिश्रमं करोति स्म इति श्रुत्वा अहं कथयामि स्म, अहमपि कस्मिंश्चित् दिने भवतः स्वप्नान् पूरयिष्यामि। तदा सः वदति स्म, स्वप्नपूर्तिः कथनमात्रेण न भवति, तदर्थं महान् श्रमः अपेक्षितः, परिश्रमः करणीयः भवति। मिल्खा सिंह वर्यः रक्तवमनं करोति स्म, आतपे धावति स्म, आदिनं प्रशिक्षणं प्राप्नोति स्म। एतत् सर्वमपि मां प्रेरयत्, पिता मां प्रेरयति स्म। यदि अहं धावयेयं तर्हि देशार्थं, देशार्थं पदकं मानयेयं, जयेयं वा। यदा च अहं स्पर्धावर्गे 100 मीटर मितं धावनक्रमं चितवान्, तदा सर्वे मां तदर्थं निराकुर्वन्ति स्म। सर्वे कथयन्ति स्म, वत्स, 100 मिते धावनस्पर्धावर्गे मास्तु, 100 मितः वर्गः भारतीयेभ्यः नास्ति, भारतीयानां वपुः 100 मीटर मिते वर्गे सहभागितां कर्तुं नैव निर्मितमस्ति। तदा तदा अहं मम पिता च वदावः स्म यत्, वत्स गुरिन्दर्, आवाम् एतं वर्गं चितवन्तौ, अथ एतस्मात् कथमपि पृष्ठतः न भवावः। ये खलु कथयन्ति एतौ न कर्तुं शक्नुतः, तान् आवां कृत्वा प्रदर्शयेव। अथ त्वं तथा करिष्यसि, त्वयि मम विश्वासः अस्ति। स च विश्वासः यः मम पिता मयि अकरोत्, तम् एवम् अहं शक्तिरूपम् अभिज्ञाय अग्रेसरः अभवम्। अधुना च प्रत्येकं भारतीयः कथयति, मित्र, भारतीय धावनक्रमम् आचर। प्रधानमन्त्री, पश्यताम्, भवद्भ्यां विशिष्टं हि कार्याचरणं कृतमस्ति, अथ च केवलं दिनद्वये भवद्भ्यां वारत्रयं राष्ट्रियं कीर्तिमानाङ्कनं ध्वस्तं कृतमस्ति। 100 मीटर मिते धावनक्रमे धावनं यथा गुरिन्दर वीरः अवदत्, जनाः कथयन्ति यत् भारतस्य जनानां वपुः तु एतदर्थं न योग्यम्, एतावति कठिने सत्यपि भवद्भ्यां कार्यं कृतम्। उभाभ्यामपि अहं ज्ञातु कामः, मन की बात इति कार्यक्रमस्य श्रोतारः अपि श्रोतु कामाः स्युः, यत् कीदृशः एषः उत्साहः आसीत्, कः हठः आसीत्, किं चिन्तितमासीत्, अथ कथं कुर्वन्तौ आस्ताम्, कियत् कठिनं भवति। गुरिन्दरवीरः, आम् महोदय, अहं गुरिन्दरवीरः, आरम्भे अतिसङ्घर्षः आसीत्, बहुधा संशयः भवति स्म, अपि अहं सम्यक् कुर्वन्नस्मि, अपि अहं सम्यक् चितवान्, यतो हि प्रतिवारं कश्चन विजयं न प्राप्नोति, कदाचित् भवान् शिक्षणमपि प्राप्नोति, यदा अहं पराजितः भवामि स्म, यदा मम प्रदर्शनं सम्यक् न भवति स्म, काचित् क्षतिः भवति स्म, तदा मम कुटुम्बिनः मम सहयोगं कुर्वन्ति स्म, ते कथयन्ति स्म, भवतु नाम एकं दिनम् एव अनुत्तमं गतम्, एकं वर्षम् असमीचीनं गतम्, परमनेन जीवनं तु नष्टं न भवति, स्वप्नदर्शनं न बाधितं भवेत्, मम प्रशिक्षकः अपि बोधयति स्म, यदि त्वं न करिष्यसि तर्हि कोऽपि न कर्तुं पारयिष्यति। इत्थं यदा आस्माकीनः समा

0: अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:08 हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल मंडल।
1: नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल। नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल।
0: नन्हे मुन्ने दोस्तों नमस्कार। आज संडे का दिन है और आज के दिन की विशेष बात होती है आकाशवाणी हमीरपुर से नन्हे मुन्ने दोस्तों का ये कार्यक्रम जिसका नाम है बालमंडल। और आज का बालमंडल कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष आपकी रेडियो दीदी अंजू शर्मा। जी नन्हे दोस्तों, आज के दिन थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम होता है और आप सभी बच्चों को इंतज़ार रहता है आज के इस कार्यक्रम का। तो नन्हे दोस्तों, आज के दिन में हम कुछ खास करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज किसी बस, कार या ट्रेन में बैठकर सैर पर नहीं जाने वाले। आज हम बैठेंगे एक चमचमाते रॉकेट में, जी हाँ, और सीधे चलेंगे अंतरिक्ष की सैर पर। और नन्हे दोस्तों, आज हमारा रॉकेट लैंड करने वाला है सौर मंडल के कुछ आश्चर्यजनक जगहों पर, और साथ ही कुछ अंतरिक्ष की बातें भी हम आपके साथ करेंगे। तो नन्हे दोस्तों, सबसे पहले हम आपके साथ बात करते हैं कुछ ग्रहों की जो सौरमंडल के अनोखे मिजाज के हैं, तो और साथ में अंतरिक्ष से जुड़े कुछ फैक्ट्स एकदम परफेक्ट और रोमांचक तरीके से हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सौरमंडल के ग्रहों के बारे में। तो हमारे नन्हे दोस्त ये जानते हैं कि सबसे गर्म ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। जी हाँ, वैसे तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है, लेकिन हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र यानी वीनस है। यहाँ का तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और यहाँ पानी की नहीं बल्कि तेजाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। और नन्हे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोहे की वजह से लाल है मंगल? जी हाँ, मंगल ग्रह यानी मार्स को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर भारी मात्रा में आयरन ऑक्साइड यानी लोहे का जंग मौजूद है। इसी वजह से यह आसमान में लाल चमकता हुआ दिखाई देता है। बच्चों, हीरों की बारिश वाले ग्रह की अगर हम बात करें तो हमारे सौरमंडल के दो बड़े गैसीय ग्रह शनि और बृहस्पति हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां के वायुमंडल के दबाव के कारण बादलों से पानी की जगह हीरे बरसते हैं। है ना अद्भुत? और एक और बहुत ही अद्भुत बात हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी पर तैर सकता है शनि। जी हाँ साथियों, शनि ग्रह के चारों ओर खूबसूरत छल्ले यानी रिंग्स तो हैं ही, लेकिन इसकी एक और अनोखी बात यह है कि इसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी से भी कम है। तो नन्हे दोस्तों, अगर किसी बहुत बड़े महासागर में शनि ग्रह को डाल दिया जाए तो वह डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा।

आवाज़ को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम जैसे हवा या पानी की ज़रूरत होती है जो स्पेस में नहीं है, इसलिए वहाँ धमाके भी हो जाएं तो सुनाई नहीं देंगे। और एक बात और भी है, हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को ये हम बताना चाहेंगे कि अंतरिक्ष में रोना नामुमकिन है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण अंतरिक्ष में आंसू नीचे नहीं गिरते। अगर कोई वहाँ रोएगा तो आंसू आंख के पास एक पानी के बुलबुले की तरह जमा हो जाएंगे जिन्हें पोंछना पड़ेगा। और भी बहुत सारे अनोखे फैक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो सूर्य की विशालता की बात हम आपके साथ ज़रूर करना चाहेंगे। बच्चों, सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। बृहस्पति के तूफान की अगर हम बात करें तो बृहस्पति ग्रह पर एक लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट है, जो असल में एक भयंकर तूफान है। ये तूफान पिछले 350 सालों से लगातार चल रहा है और ये आकार में हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। और अंतरिक्ष में उम्र की अगर हम बात करें तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण अंतरिक्ष में इंसानों की रीढ़ की हड्डी फैल जाती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री जब वापस आते हैं ना तो उनकी लंबाई लगभग 2 इंच बढ़ जाती है। नन्हे दोस्तों, समय के फेर की अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह पर एक दिन वहां के 1 साल से भी बड़ा होता है। उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय वह अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लेता है। तो युवा, हमारे जो नन्हे दोस्त हैं, जब वो युवा बनेंगे ना तो जब इन सारे फैक्ट्स को वो पढ़ेंगे और इनके ऊपर रिसर्च करेंगे तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये जो अनोखे फैक्ट्स हैं ये बिल्कुल सच्चे हैं। तो नन्हे दोस्तों, अगली बार जब आप रात को आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देखें ना तो सोचिएगा ज़रूर कि ऊपर एक ऐसी दुनिया है जहां हीरों की बारिश होती है और जहां सन्नाटे की भी अपनी ही एक धुन है।

तो प्यारे बच्चों, ये तो थी जानकारी कुछ अनोखे फैक्ट्स की जो अंतरिक्ष में और हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त है एक प्यारा सा गीत आपको सुनवाने का। तो ये नंगा पुंगा दोस्त आपके मनोरंजन के लिए आया है। ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये है पीके फिल्म का। तो एंजॉय कीजिए इस गीत को।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी नन्हे दोस्तों, इस प्यारे से गीत और विज्ञापन के बाद अब कार्यक्रम बाल मंडल में समय है आपको एक कहानी सुनाने का। जी हाँ, और आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बोलते पेड़ का दर्द। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आज की कहानी को हमें अपने दिल से महसूस करना है। और ये कहानी है आपके ही जैसे एक चुलबुले बच्चे जिसका नाम है चिंटू और उसके सबसे अच्छे दोस्त गप्पू पेड़ की। बच्चों, चिंटू के घर के पास आम का एक बहुत पुराना बड़ा सा पेड़ था जिसे चिंटू प्यार से गप्पू बुलाता था। चिंटू रोज उसकी ठंडी छांव में खेलता, उसके मीठे मीठे आम खाता और जब थक जाता तो उसी के तने से पीठ टिकाकर सो जाता। गप्पू पेड़ भी अपनी टहनियों को हिलाकर चिंटू को ऐसे हवा देता जैसे मम्मी लोरी सुना रही हो। दोनों की दोस्ती बच्चों एकदम पक्की थी। लेकिन एक दिन चिंटू ने देखा कि हाथ में कुल्हाड़ी लिए कुछ लोग आए और गप्पू पेड़ को काटने की बात करने लगे। बच्चों, चिंटू बहुत डर गया और उसी रात चिंटू को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि गप्पू पेड़ रो रहा है और गप्पू पेड़ ने रोते हुए चिंटू से कहा, चिंटू मेरे दोस्त, अगर उन लोगों ने मुझे काट दिया तो मैं तुम्हें मीठे आम कहाँ से दूंगा? दोपहर की धूप में तुम्हें छांव कौन देगा? और मेरे घर में जो नन्ही चिड़ियाँ रहती हैं उनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? गप्पू पेड़ का ये दर्द सुनकर सपने में ही चिंटू की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, चिंटू भागा भागा अपने स्कूल गया। उसने अपनी क्लास के सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और सबको गप्पू पेड़ के दर्द की बात बताई। फिर क्या था बच्चों, जैसे ही लकड़हारे गप्पू पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाले थे, चिंटू और उसके दर्जनों दोस्तों ने दौड़कर पेड़ को चारों तरफ से कस कर पकड़ लिया। बच्चों ने नारा लगाया, पेड़ हमारा दोस्त है, इसे काटना पाप है। नन्हे बच्चों का पेड़ के प्रति ऐसा प्यार और बहादुरी देखकर कुल्हाड़ी जो लकड़हारे थे उन्होंने जो हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी वो छूट गई। उनका दिल पिघल गया और वे बिना पेड़ काटे वापस लौट गए। चिंटू ने मुस्कुराकर अपने गप्पू पेड़ को देखा और गप्पू पेड़ ने अपनी टहनियां हिलाकर सारे बच्चों को आशीर्वाद दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही ना कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, उन्हें भी दर्द होता है, वह हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि पेड़ है तो सब सुरक्षित हैं। तो आज संडे के दिन आप सब हमसे एक वादा कीजिए कि आप सब अपने घर के आसपास कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएंगे और उसकी देखभाल भी ज़रूर करेंगे। तो बच्चों, अब कार्यक्रम में वक्त है आपको एक और गीत सुनवाने का।

0: जी नन्हे दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में और समय नहीं बचता कि हम आपके साथ और बातें कर पाएं, लेकिन इस वादे के साथ आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं कि अगले किसी अन्य कार्यक्रम में फिर कुछ नई जानकारियों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नन्हे दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान दीजिए और अपनी रेडियो दीदी अंजू शर्मा को आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की इजाज़त दीजिए।
1: नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों जय हिंद। जी सैनिक भाइयों, आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं अंजू शर्मा आपके समक्ष हाजिर हूँ कुछ फिल्मी गीतों के साथ। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं रोजा फिल्म के इस देशभक्ति गीत के साथ, जिसे गाया है हरिहरन ने और पी के मिश्रा ने इस गीत की शब्द रचना की है, संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

जी सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल मनहर उदास और सुखविंदर सिंह का गाया हुआ ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कर्मा से।

जी सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं बागवान फिल्म का ये गीत जिसे गाया है सुदेश भोंसले और अलका याग्निक ने। समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आदेश श्रीवास्तव ने।

जी सैनिक भाइयों, कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं तारारामपम फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है शान और सुनिधि चौहान ने।

जी सैनिक भाइयों, तारारम पम फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत, जय हिंद। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजा है, अब से लेकर 2 बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का? और मेरा भी जी, इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदायी हो जाता है, है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के चले जाने से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायी होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमने हमारी इबारत लिख भी दी है कि किसी के जीवन, घर, विचार से कहीं चले जाने का एहसास बहुत पीड़ादायी होता है साजना, और दीवाने रूठ कर न जाने कहाँ चले जाते हैं कि फिर उनके बगैर नींद भी नहीं आती। किसी के छोड़कर कहीं चले जाने पर दिल उनकी धुन में रोता जाता है और जोगी बन जाता है। तो ये है आज का सुरीला सफर। हमने आपको इबारत बता दी है, आपने पढ़ भी ली है, और जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनने भी ये सुन लिया होगा कि आज हमने क्या इबारत रखी है। और साथ ही हम उन शब्दों को भी बता देते हैं जो आज के चयनित गीतों में आएंगे। साजना कहीं दीवाने कहाँ छोड़ के रूठ कर जाता है नींद धुन दिल और जोगी। जी, ये ठीक उसी प्रकार का दुख कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना? बस इसी प्रकार कोई ज़िंदगी से जब चला जाता है और ज़िंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक बस उन्हीं रिश्तों से हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और उसके चले जाने पर, उस किरदार के चले जाने पर हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी से चला गया है, तो बस इसी जाने पर आज इस सुरीले सफ़र को हम तय करने वाले हैं। ठीक है, आप हैं ना हमारे साथ? तो कार्यक्रम का यह है पहला गीत। राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना।

ये स्वर थे लता मंगेशकर और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं, और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। और जब मन को पता है कि ये जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक द्वंद हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं, जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है। जब कोई अपना रूठकर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है, ही विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी।

हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है, तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं आप सभी ने। लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं, ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूँ चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं, एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी ज़िंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, और बाद में हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की ज़िंदगी से यूँ चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी की आवाज़ है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे, कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा, सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं, बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं, बिछड़े सभी बारी बारी ये सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगो कर चली आ रही हैं, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारी सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है, हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी, हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे, कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोच कर लिखने बैठूंगा, नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने, यानी एक छोटा सा शब्द है ये, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए है। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसर, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं का

एक जीवंत आईना है जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

जी तो हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं, मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना, चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द कई भाव लेकर आता है, ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहां एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ, उन यादों को हम जरूर कहीं ना कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरजू। जी, ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की पसंद मिलती है इस गीत के जरिए, है ना?

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहर में ठंडक पहुँचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहर में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघ कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है, दिल की बस्ती ऐसे उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है, रातें जागकर कटती हैं, आंखें बंद करती हैं, उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींदें छीन लेता है। इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। मुझे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार हैं, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो हैं हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे, मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कही नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है, हर छोटी चीज उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात, और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारी रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज़्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहाँ हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखते हैं कि आज संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है पर उठकर नहीं हम जा रहे, माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं, साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी से आपका कोई

दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से, ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए? लिखिएगा ये बात, हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठ कर चले आए हैं, आप किसी की ज़िंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है, या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ। लता मंगेशकर की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

ग्यावासी लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, ये अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द ताउम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। रूठकर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई, तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम की आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौट कर आएगा अचानक और कहेगा मैं यहीं था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूँ मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है, ये आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो, तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं? शायद वहाँ दूरियाँ ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दूरियां बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल और रवि की धुन।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां माँ लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ ना कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंदी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहां सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही एक लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें ज़रा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियाँ साथ नहीं देती और आँखें बेवफाई करने लगती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ भी नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूं और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है। इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूं विविध भारती को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती। ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी

0: कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। दिन के 2 बजने को हैं थोड़ी ही देर में मिड डे न्यूज़, और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government is making all efforts to preserve heritage sites of the country, highlights return of ancient Chola era copper plates to India during his recent visit to Netherlands. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Prime Minister urges people to stay safe during summer heat, promotes traditional Indian cooling drinks, and lauds farmers for taking indigenous mango varieties to global markets. Chief of Defence Staff Lieutenant General N.S. Raja Subramani says Indian Armed Forces remain committed to protecting country's sovereignty and territorial integrity. Admiral Krishna Swaminathan assumes charge as a new Chief of Naval Staff. US President Donald Trump says United States is close to reaching a nuclear agreement with Iran, warns military action remains an option if negotiations fail. In badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Indonesia in the men's doubles final of Singapore Open today. And in IPL cricket final, Gujarat Titans and Royal Challengers Bengaluru all set for epic title clash in Ahmedabad this evening. Prime Minister Narendra Modi said that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that 3 rare copper plates have been found there related to Maharishi Bal Arjun of the Pandu Vanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
3: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a special ceremony, ancient copper plates from the Chola period were returned to India. Mr. Modi said people are sharing joy and expressing pride, and the Tamil community around the world is also particularly enthusiastic about this. Prime Minister Modi has urged the people of the country to take utmost care during the prevailing hot weather and follow the guidelines issued by various government departments in this regard.
3: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: The Prime Minister suggested that people drink different summer drinks such as Aam Panna, buttermilk, lassi, sattu, sharbat, bel panna, which are traditionally made in different parts of the country to beat the heat.
3: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
2: Referring to mangoes, which are often talked about in summer, the Prime Minister said every region has its own mango, its own flavor and its own aroma.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से

0: निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
3: नेवी, एयरफोर्स,
4: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
3: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं अब से लेकर 3 बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना। आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं। स्वर लता मंगेशकर का और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने, फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

0: अनुभव तुम चल धारा मन की मैया डो न जाए मस्त पवन हो तुम चल धारा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
4: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल बिस्वास का।

आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

अभी आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बजने को हैं थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना और सोल कढ़ी का सेवन करना उपयोगी है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड्स सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 3 नगर निगमों में जीत हासिल कर ली है। आज हुई मतगणना के मुताबिक धर्मशाला नगर निगम में कुल 17 वार्डों में से भाजपा ने 11, कांग्रेस ने 5 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 वार्ड पर जीत हासिल की है। इसी प्रकार सोलन नगर निगम में भाजपा को 10 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 6 वार्डों में ही जीत हासिल हुई है। 1 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। उधर मंडी नगर निगम में भाजपा को 12, कांग्रेस को 1 और निर्दलीय प्रत्याशी को भी 1 वार्ड में जीत मिली है। पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। शहर के कुल 15 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस और 4 वार्डों में भाजपा को जीत मिली है। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने स्थानीय नगर निगम पर भाजपा को मिली जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया है।
2: 17 में से 11 वार्ड में पार्टी जो है वो विजय होकर आई है। बहुत बड़ा ये मैंडेट है पार्टी के लिए। हमारी तो अपेक्षा थी कि इससे ज्यादा सीटें हमारी आएंगी, लेकिन कुछ जगह पर कुछ अंतर से जो है वो पार्टी हारी है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम बना है। पूरे नगर निगम के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और नगर निगम में कार्य हो, धर्मशाला जो है वो तेजी से विकास की गति पकड़े और आने वाला समय अच्छा हो धर्मशाला के लिए, इस भावना से हम लोग सब काम करेंगे।
0: इस बीच प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को हुए जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना भी आज हो रही है। राज्य के 51 विकास खंडों में सुबह 9 बजे मतगणना शुरू हुई और अनेक सदस्यों के चुनावी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार आज शाम तक सभी प्रत्याशियों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जिला परिषद सदस्यों के विजेताओं की आधिकारिक घोषणा उपायुक्त और BDC सदस्यों की घोषणा संबंधित उपमंडल अधिकारी द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई के बीच चलेगा। इस दौरान मकान सूचीकरण, मकान गणना और जनसंख्या की गणना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल 1 जून से 15 जून तक लोग स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने लोगों से स्वगणना विकल्प का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में दूसरे चरण में 11 सितंबर से 30 सितंबर तक जनगणना का कार्य किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है पीएम स्वनिधि गुजारे से आत्मनिर्भरता की ओर। वाचक स्वर है पूनम शर्मा।
0: पीएम स्वनिधि भारत की अनाधिकारिक शहरी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को सहायता देने वाली एक बड़ी पहल के तौर पर उभरी है। बिना किसी गारंटी के ऋण देने के अलावा इस योजना ने डिजिटल तरीकों को अपनाने को बढ़ावा दिया है, संस्थागत ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाया है और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया है। वर्ष 2020 में शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से ज्यादा ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इस पहल से शहरों और कस्बों में 75,00,000 से ज्यादा लाभार्थियों को फायदा हुआ है। इस योजना के तहत 17,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका असर न सिर्फ सरकारी आंकड़ों में दिखता है बल्कि उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी नजर आता है जो अपनी आजीविका को ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बना रहे हैं। किसी भीड़भाड़ वाले बाजार में सब्जी बेचने वाला और किसी व्यस्त दफ्तर के बाहर चाय बेचने वाला, ये भारतीय शहरों में आम नजारे हैं। गलियों में घूमकर फल बेचने वाला और सड़क के किनारे फुटपाथ पर जूते ठीक करने वाला भी रोजमर्रा की शहरी जिंदगी के लिए उतने ही जरूरी हैं। ये लाखों रेहड़ी पटरी वाले मिलकर हर दिन भारत की शहरी अर्थव्यवस्था को चलाते रहते हैं। वे स्थानीय बाजारों और आस पड़ोस की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखते हुए किफायती सामान और जरूरी सेवाएं देते हैं। हालांकि औपचारिक ऋण तक उनकी पहुंच बहुत कम थी, जिसकी वजह से कई विक्रेताओं को बहुत ज्यादा ब्याज दरों पर अनौपचारिक ऋण पर निर्भर रहना पड़ता था। उनकी इन मुश्किलों को दूर करने के लिए जून 2020 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई। ये अपनी तरह की पहली सूक्ष्म वित्तीय पहल थी जो रेहड़ी पटरी वालों पर केंद्रित थी और जिसे सरकार की क्रेडिट गारंटी का सहारा मिला हुआ था। इस योजना का मकसद रेहड़ी पटरी वालों को स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान देना था। आज पीएम स्वनिधि सिर्फ एक ऋण देने वाली सामान्य योजना से कहीं आगे बढ़कर एक देशव्यापी आंदोलन बन गई है जो भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लाखों लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, डिजिटल दुनिया से जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा देने का काम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना ने देश भर के शहरों और कस्बों में जबरदस्त तरक्की की है। इस योजना के तहत 55,00,000 से ज्यादा लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया है। एक साथ मिलकर उन्होंने लगभग 8,96,000 करोड़ रुपए के 841 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं। पीएम स्वनिधि के तहत लाभार्थियों को डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन और ब्याज सब्सिडी के जरिए लगभग 800 करोड़ रुपए भी मिले हैं। इन मजबूत उपलब्धियों और महसूस किए जाने वाले प्रभाव को देखते हुए इस योजना को मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना ने देशभर के विक्रेताओं के लिए व्यापार की स्थिरता को मजबूत किया है और उनकी आमदनी में सुधार किया है। लगभग 95% लाभार्थियों ने पीएम स्वनिधि के तहत पहली बार औपचारिक संस्थागत ऋण प्राप्त किया। लगभग 30% लोगों ने बाद में स्वनिधि ऋणों के अलावा अतिरिक्त ऋण भी प्राप्त किया जो उनकी बेहतर ऋण पात्रता और वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। लाभार्थियों की आय में भी औसतन लगभग 20% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। पीएम स्वनिधि के तहत हुए आर्थिक लाभों ने लाभार्थियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस योजना ने आवास की अधिक स्थिरता और पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक बेहतर पहुंच में सहायता प्रदान की। पीएम स्वनिधि ने शहरी क्षेत्रों के कमजोर समुदायों के बीच

0: सामाजिक समावेशन को भी मजबूत किया है। इस योजना के तहत लगभग 46% लाभार्थी महिलाएं हैं, जो इसमें मजबूत लैंगिक समावेश को दर्शाती हैं। लगभग 70% लाभार्थी हाशिए पर रह रहे समुदायों से हैं, जो इस योजना की समावेशी पहुंच को उजागर करता है। आंकड़ों और ऋण वितरण के पीछे दृढ़ता, साहस और नई उम्मीदों की कहानियां हैं। कई विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि ने स्थिरता, विकास और उन अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं, जिन्हें कभी उनकी पहुंच से बाहर माना जाता था।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:10 हुए हैं अब से लेकर 4:59 तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले, और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है

0: पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
0: हैं। मनचाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एम जी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: के तरंग में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये एक गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा
2: रहा है। नहीं, बल्कि ये तो मुझे मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डेजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूँ 2 हफ्ते की छुट्टी ले लूँ। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना। हा?
2: प्यारा प्यारा सा दुलारा सनम।
1: देसी
2: छोड़ दीजिए ना।
1: अरे अरे सुनो तो।
2: नहीं सुनती।
1: ओफ, अरे बात तो सुनो
2: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
1: ओ डेजी, डेजी माय लव। डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
1: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
1: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: तेजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मन बहुत अशांत है।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की साड़ी।
0: ओह डेजी, माय गॉड।

0: सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?

0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
1: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
1: मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
1: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
1: पहले उसे दवा दी जा रही है।
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
1: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में नहीं। जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
1: तो क्या करूँ मैं? आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
1: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
1: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
1: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
1: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
1: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने कुरूप बच्चे का पिता होने का भार नहीं ढो सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूँ। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
1: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूँ, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
1: जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
2: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
1: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों जी?
0: जी
2: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
2: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
1: अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
2: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा। है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
0: एक साथ घूमने लगेंगे?
2: हाँ?
0: आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
2: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है?
0: वो
2: सो रहा है।
0: वो तो बहुत बीमार है। दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
1: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
2: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है?
1: Well, but that doesn't matter, doctor. A slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
2: अच्छा, मैं चलता हूँ। भाई कुछ जरूरी काम है। चलो डेजी।
1: ओके।
0: अच्छा डॉक्टर।
1: बाय डॉक्टर। बाय।
0: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
1: जब तक जरूरी होगा।
0: मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
1: अपने लिए।
0: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
1: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
0: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
1: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
0: आपसे कहा था जरा बच्चे की जाँच कर लो।
1: जाँच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
0: ये क्यों नहीं कहते कि आप जाँच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
1: जैसे तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
0: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
1: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
0: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
1: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
0: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
1: मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
0: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
1: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है? मरे हुए बेनी के साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
0: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
1: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
0: तुम्हें क्या हो गया है?
1: तुम उससे ज्यादा बेनी के इस फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
0: मिल गया संतोष, बेनी मुझे क्षमा करना, बेनी मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
2: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
0: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
2: कैसी शंका?
0: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
2: ओह डेजी, तुम्हारा सवाल बड़ा विचित्र है।
0: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
2: नहीं।
0: मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
2: लॉरेंस को? नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
0: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
2: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
0: आप ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
2: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ?
0: इस बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
2: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
2: क्या?
0: लेकिन वास्तव में डॉक्टर, डॉक्टर आप मेरे पर एक कृपा कीजिए।
2: बोलो।
0: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
2: मैं?
0: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
2: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है, मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। I'm sorry.
0: Please, doctor, please, मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
2: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
0: प्लीज डॉक्टर।
2: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले, ये बेनी का प्रेत है।
3: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा, तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
2: डॉक्टर लॉरेंस।
3: ओ, डॉक्टर रामदास,
2: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
4: बैठ जाइए
2: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा जल बसाना
4: जी,
2: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले, आपने मेरा प्रेस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
1: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को इस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
2: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
1: समझा नहीं?
2: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
1: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
2: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
1: डॉक्टर।
2: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
1: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
2: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
1: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
2: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
1: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझकर किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
1: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
2: नो, इट वाज नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
1: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर।
2: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
1: नो नो नो,
2: क्यों डॉक्टर, सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
1: डॉक्टर, डॉक्टर
2: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
1: सच है, सच है डॉक्टर, लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
2: बेचारा बेनी। मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
1: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
2: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू।
2: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर।
2: क्योंकि न कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर लॉरेंस, मैं अब चलता हूं।
1: ये मैंने क्या कर डाला है?
3: मैं

0: क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
1: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
0: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
1: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
0: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
1: लॉरेंस, तुम अचानक,
0: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
1: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
0: हाँ, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
1: मैं भी तुम्हें,
0: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ, डेजी सब भूल जाओ।
1: भुला दूंगी, हमेशा के लिए भुला दूंगी।
0: हाँ, वो डेजी मैंने मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
1: हाँ हाँ मैं अभी लाती हूँ।
0: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ उसको फ्रेम करवा के हम यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
1: हाँ हाँ जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
0: डेजी
1: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
0: ये क्या कर रही हो तुम डेजी?
1: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
0: नहीं, नहीं, नहीं, डेजी
1: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ली।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं डेजी सुनो तो।
1: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह सकेंगे।
0: नहीं नहीं, डेजी ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
1: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
0: ओह माय गॉड,
1: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
0: नो, ओ नो।
1: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
0: विदा?
1: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ।
0: नहीं नहीं, डेजी, डेजी,
1: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो, उनके लिए मुझे माफ कर देना। आपको क्या हो रहा है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
0: डेजी, ये मेरी नसें टूट रही है। डेजी, डेजी तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेजी,
1: नहीं लॉरेंस, नहीं नहीं लॉरेंस, विश्वास करो मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? डरो, डरो। भागी भागी हॉस्पिटल गई। डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
2: एक छोटी सी बात।
1: क्या?
2: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लहरा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना होगा तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
2: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्र कवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
2: अच्छा।
3: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हिंदी भाषा के, मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
2: जी,
3: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
2: अच्छा जी।
3: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
2: ही हैं।
3: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
2: अच्छा।
3: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी
2: जी, बिल्कुल।
3: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
2: जी,
3: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
2: अच्छा जी।
3: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे
2: जी,
3: रावल जी।
2: अच्छा।
3: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु रॉय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
2: जी।
3: वहाँ पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहाँ पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
2: अच्छा।
3: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूँ, मैं तो कवि हूँ और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
2: बन गए। थी कौन से सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें लिया गया?
3: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
2: जी।
3: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
2: बिल्कुल।
3: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
2: जी, एक्टर
3: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए
2: और
3: प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
2: तो मितुल जी आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का।
3: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना।
2: वाह क्या बात है,
3: हेमंत कुमार
2: की आवाज में।
3: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
2: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
3: हाँ
2: हाँ जी बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं। हाँ। प्यारा सा गीत।
4: जग

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कभी प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था?
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था दोनों बहनों के बीच में। तो मैं छोटी और दीदी ज़्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफ़ी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: हुआ जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफ़ी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
0: जी
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति,
0: और सिद्धांतवादी।
1: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया। हाँ, तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती,
0: जी
1: तो दो कल्चर थे घर में।

0: पढ़ाई हुई, और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं
1: नहीं
0: थी।
1: थी जी।
0: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने सात फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी
0: बहुत बहुत बहुत सारी
1: जी।
0: बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने, ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफ़ी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं। तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ,
1: जी।
0: आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी, वो गर्म
0: मैं
1: है।
0: गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूँगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ
1: अच्छा
0: लेना नहीं चाहता हूँ,
1: जी।
0: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियाँ तो दी
1: हाँ
0: होगी,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे
1: पिता
0: बापू।
1: जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब।
1: अच्छा।
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूँ।
1: अरे
0: तो उन्होंने बोल दिया माँ पर, मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
1: जी
0: लेके।
1: जी
0: तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
1: जी
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहाँ से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था, अरे नारायण जी आप आए हैं आइए। बोलते माफ कीजिए, लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी।
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी।
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए, और वैसे मतलब ये जो
1: विवाह,
0: यूनियन
1: हाँ,
0: था
1: वो संपन्न
0: विवाह
1: हुआ
0: का, तो वो खुशी
1: जी
0: खुशी उसकी समापन हुआ,
1: जी। तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही
0: एक
1: उस
0: पानी बन के
1: दाम्पत्य
0: रही।
1: जीवन में।
0: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी, लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी, ये सबसे बड़ी बात है जी।
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी, और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
1: वाह,
0: मतलब
1: उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
0: ऐसी
1: में की
0: की।
1: गई
0: हाँ
1: नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज़ में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल।
1: है ना? ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे,
0: थे
1: वो सब पता चलने लगा।
0: जी।
1: और खैर, वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया,
0: घर में एक आम पिता की
1: आम
0: तरह वो
1: पिता की
0: रहे
1: तरह।
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, कि कोई
0: जी
1: स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने
0: लिखाई
1: की
0: थी
1: शक्ति
0: जी, बिल्कुल
1: वो और बढ़ी मेरी माँ के कारण।
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर
1: जी
0: दिखाया।
1: जी
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम, इंदौर वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊ जी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू, उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था, वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई,
0: जी
1: वो उन्होंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे, और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है, ये कोई
0: मतलब
1: जानबूझ के नहीं
0: स्वप्रेरित
1: हुआ।
0: हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था,
1: हाँ
0: तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है
1: हाँ
0: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए
1: हाँ और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
0: जी।
1: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
0: हाँ,
1: और
0: तब
1: फिर
0: तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में।
1: नहीं, वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे
0: जी
1: मुंबई।
0: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान।
1: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया
0: उग्र
1: था उस
0: रूप में।
1: वक्त।
0: हाँ जी।
1: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
0: जी, क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने?
1: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
0: जी
1: थी,
0: जी
1: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और काफ़ी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर ही ये
0: जी
1: कविता
0: जी
1: लिखी
0: बिल्कुल।
1: है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
0: बहुत खूब।
1: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है, लेकिन
0: जी जी
1: ये यही
0: जी
1: कविता है जो उन्होंने
0: लिखी
1: उसी वक्त लिखी,
0: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ
1: अंकुर
0: और
1: पैदा
0: वहां से
1: हुआ।
0: वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
1: हाँ
0: जी, तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं। आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
1: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है,
0: जी
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
0: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी
1: लेकिन जो बातें सुनी, और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी।
0: जी
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज़ हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको
0: बिल्कुल
1: गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान,
0: जी
1: माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत कर दिया।
1: भूमिगत, भूमिगत तो भूमिगत हो गए। तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे, वो वहाँ पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे,
0: जी
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहाँ के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं, देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
0: बिल्कुल
1: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है? तो वो बात
0: जी
1: सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
0: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
1: शब्दों
0: क्योंकि
1: की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
0: बिल्कुल। और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता
1: और
0: है।
1: दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
1: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो
0: जी
1: उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती
0: कश्ती
1: निकाल
0: निकाल
1: के,
0: के,
1: तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी। सबसे बड़ी बात
1: सही
0: ये
1: बात है।
0: है ना? और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
1: बहुत ज़्यादा गांधी जी उनके हीरो थे, तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में, आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली, रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज़ जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है, इस गाने के सिवाय वो
0: कोई
1: पूरी नहीं
0: गाना
1: होती।
0: जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
1: जी,
0: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
1: यही गीत
0: साबरमती के संत।
1: साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूँ। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहाँ पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहाँ के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहाँ जाते रहते थे, वहाँ खेत खलिहान थे। तो वहाँ पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं,
0: भील
1: जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की भी नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है? तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए। फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया,
0: जी
1: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
0: बिल्कुल।
1: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं,
0: बिल्कुल, वो दर्शन
1: एक
0: जो
1: छोटे
0: उन्होंने
1: पिंजरे
0: दिया।
1: में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे
0: अध्यात्म के
1: संसार
0: गीत
1: की
0: हुए।
1: हालत क्या हो गई, भगवान
0: हाँ,
1: कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी,
0: देखी
1: हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको
0: मुखड़ा
1: क्या
0: देख ले
1: बताऊं,
0: दर्पण में।
1: मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
0: सीरीज है उनके पास, और
1: हाँ
0: आज भी उनके
1: सुनते हैं लोग,
0: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद
1: सुनते
0: करते हैं।
1: हैं।
0: क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
1: पिंजरे के पंछी सुनिए,
0: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: देखिए मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था। शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे, तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना, समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं हैं जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे,
1: एकदम सही
0: गीत दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहाँ पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं,
0: हाँ।
1: और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी, सब लोग तुम क्यों रो रही हो,
0: हाँ।
1: मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा।
1: जी,
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहाँ हम लोग सोचते हैं कि अरे हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है, कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या हैं।
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं
0: समझा
1: कि
0: लेते
1: अच्छा
0: हैं।
1: इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे ना

0: अरे भाई, तो
1: हाँ,
0: हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में ये
1: कर्मों
0: सब
1: में कुछ
0: लिखा
1: गलत।
0: है तो।
1: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले
0: वाले
1: तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को, हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
4: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे

0: उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
0: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में जनरल सुब्रमणि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बातचीत ने भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के लॉन्गव्यू शहर में पिछले मंगलवार को एक रासायनिक टैंक में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुराह उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर हुई, जब एक कार खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद से वाहन में सवार सभी लोग लापता हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोतों भी आप हिंदी समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं। अब सुनिए आज डिलीवर होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रमों की रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। 5:30 पर सुनिए युव मंच कार्यक्रम। 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर सुनिए सबर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम और 6:30 पर सुनिए गल तो सांदी कार्यक्रम। 7:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर सुनिए रेडियो

दीदान कार्यक्रम। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8 बजे सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। News@9 पर सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे सुनिए दिलंदे में ईद पहाड़ी गीत कार्यक्रम। 10:30 पर सुनिए रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। और 11 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जिसके मन में राम है, भाग्य में उसके वैकुंठ धाम है। उसके उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण है।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: श्रोते, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, 5:30 हुए हैं, अब सुनिए युवमंच कार्यक्रम।

0: गुड इवनिंग युवा साथियों, आज का युव मंच कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और आज भी बहुत सारी जानकारियाँ और ढेर सारा मनोरंजन लेकर इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जी युवा साथियों, आज 31 मई है और आप सभी जानते हैं कि आज का ये दिन विशेष तौर पर जाना जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तौर पर। तो आज की हमारी पहली जानकारी भी यही है और वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आज की जानकारी दे रही हैं कार्तिक।
1: गुड इवनिंग युवा साथियों, मैं कार्तिक आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में जानकारी लेकर। युवा साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान के प्रति जागरूक करना है। तंबाकू केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। आज के समय में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी और ई सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। विशेष रूप से युवाओं में यह एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। इसीलिए 31 मई का यह अभियान प्रशासन, स्वास्थ्य संगठनों, स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं को एक साझा मंच प्रदान करता है, जहां वे लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकें। इस दिन अनेक देशों में जागरूकता रैलियां, स्वास्थ्य शिविर, भाषण, पोस्टर अभियान और जन संदेश कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए प्रेरित करना है। युवा साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत वर्ष 1987 में WHO द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व भर में तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों और मृत्यु के प्रति लोगों को जागरूक करना था। प्रारंभ में विश्व स्वास्थ्य सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके अंतर्गत 7 अप्रैल सन 1988 को पहला विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। इसके बाद तंबाकू के बढ़ते दुष्प्रभावों को देखते हुए हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तब से यह दिवस पूरे विश्व में जन जागरूकता अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। समय के साथ इस दिवस का महत्व और अधिक बढ़ता गया। विभिन्न देशों की सरकारें, स्वास्थ्य संस्थाएं तथा सामाजिक संगठन इस अवसर पर लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हर वर्ष इस दिवस के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है और युवा साथियों, इस बार की थीम है तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना, यानी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। 31 मई को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे? युवा साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है क्योंकि WHO ने इस दिन को तंबाकू के विरुद्ध वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निर्धारित किया था। इस दिन का चयन इसलिए किया गया ताकि दुनिया भर के लोग तंबाकू सेवन के खतरों के बारे में एक साथ जागरूक हो सकें और समाज में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक संदेश पहुंचाया जा सके। यह दिवस लोगों को यह समझाने का प्रयास करता है कि तंबाकू केवल एक आदत नहीं है, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है। आइए अब हम जानते हैं कि तंबाकू है क्या। तंबाकू एक प्रकार का पौधा है जिसकी पत्तियों में निकोटीन नामक नशीला पदार्थ पाया जाता है। निकोटीन शरीर और मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है तथा धीरे धीरे व्यक्ति को इसकी लत लग जाती है। तंबाकू का उपयोग धूम्रपान और धूम्र रहित दोनों रूपों में किया जाता है। तंबाकू में अनेक हानिकारक रसायन पाए जाते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। युवा साथियों, तंबाकू कई प्रकार से उपयोग किया जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में इसके सेवन के तरीके भी भिन्न होते हैं। धूम्रपान वाले तंबाकू उत्पादों में सिगरेट, बीड़ी, सिगार और हुक्का प्रमुख है। सिगरेट और बीड़ी का धुआं सीधे फेफड़ों में पहुंच जाता है, जिससे श्वसन तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त आजकल ई सिगरेट और वेपिंग जैसे आधुनिक तंबाकू उत्पाद भी युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, हालांकि इन्हें भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। युवा साथियों, धूम्र रहित तंबाकू में गुटखा, खैनी, जर्दा, पान मसाला और चबाने वाला तंबाकू शामिल है। ये पदार्थ मुख, गले और पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं तथा मुख कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। भारत सहित अनेक देशों में गुटखा और खैनी का सेवन बड़ी संख्या में किया जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार तंबाकू का कोई भी रूप सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि इसके सभी प्रकार शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। युवा साथियों, प्रशासन द्वारा तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। प्रशासन ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम अर्थात COTPA एक्ट लागू किया है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी चित्र और संदेश छापना अनिवार्य किया गया है, ताकि लोग इसके खतरों को समझ सके। प्रशासन समय समय पर जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य कार्यक्रम भी आयोजित करता है। स्कूलों और अस्पतालों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने तंबाकू विज्ञापनों को नियंत्रित करने तथा युवाओं को तंबाकू सेवन से बचाने के लिए विशेष नियम बनाए हैं। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और तंबाकू से होने वाली बीमारियों को कम करना है। तंबाकू की लत छोड़ना कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन से इसे छोड़ा जा सकता है। सबसे पहले व्यक्ति को यह समझना आवश्यक है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। तंबाकू छोड़ने के लिए धीरे धीरे सेवन कम करना तथा परिवार और मित्रों का सहयोग लेना उपयोगी माना जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को उन परिस्थितियों से बचना चाहिए जो तंबाकू सेवन की इच्छा को बढ़ाती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ के अनुसार योग, प्राणायाम, ध्यान और नियमित व्यायाम तंबाकू छोड़ने में सहायता कर सकते हैं। सकारात्मक सोच, संतुलित आहार और स्वस्थ दिनचर्या भी नशा मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में नशा मुक्ति परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जहां विशेषज्ञ लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तंबाकू छोड़ने से न केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि परिवार और समाज को भी सकारात्मक लाभ प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि योग शरीर और मन दोनों को संतुलित करने में सहायता करता है, जिससे व्यक्ति तनाव और चिंता को नियंत्रित कर पाता है। कई लोग मानसिक तनाव या आदत के कारण तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन नियमित योगाभ्यास से मन शांत होता है और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी जैसे प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत बनाने तथा श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक माने जाते हैं। ध्यान और योगाभ्यास से व्यक्ति की सकारात्मक सोच बढ़ती है तथा नशे की इच्छा को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार नियमित योग करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। यही कारण है कि आज कई नशा मुक्ति केंद्रों में योग और ध्यान को उपचार का एक महत्वपूर्ण भाग बनाया जा रहा है। युवा साथियों, आज के व्यस्त जीवन में कई लोग तनाव और गलत आदतों के कारण अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करने लगते हैं। तंबाकू जैसी हानिकारक वस्तुएं स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ के अनुसार पौष्टिक भोजन, योग, ध्यान और नियमित शारीरिक गतिविधियां व्यक्ति को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में सहायता करती है। स्वस्थ जीवन शैली केवल रोगों से बचाव ही नहीं करती बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाती है। दोस्तों, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति माने जाते हैं और देश का भविष्य उनके ही हाथों में होता है। इसीलिए युवाओं का स्वस्थ, जागरूक और सकारात्मक होना अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में कुछ युवा फैशन, मित्रों के प्रभाव या तनाव के कारण तंबाकू सेवन की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन यह आदत उनके स्वास्थ्य और भविष्य दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि वास्तविक आत्मविश्वास और सफलता स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से प्राप्त होती है, ना कि नशे से। हम सभी को खेल, योग, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा व्यक्तित्व सकारात्मक रूप से विकसित हो सके। तंबाकू से दूर रहकर हम अपने परिवार, समाज और देश के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ के अनुसार यदि युवा पीढ़ी नशा मुक्त जीवन अपनाए तो समाज में अनेक स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याओं को कम किया जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक युवा को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए तंबाकू मुक्त भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तंबाकू से नाता तोड़े और जिंदगी से नाता जोड़े। आज ही खुद से और अपने परिवार से एक वादा करें कि हम और आने वाली पीढ़ी को धुएं की दुनिया से मुक्त रखेंगे। धन्यवाद
0: जी। युवा साथियों, अभी आपने सुनी ये जानकारी जिसका विषय था विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और जानकारी दे रहे थे कार्तिक। इस जानकारी के बाद युवा साथियों, अब कार्यक्रम में वक्त है आपको एक गीत सुनवाने का।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जी युवा साथियों, इस म्यूजिकल और कमर्शियल ब्रेक के बाद अब कार्यक्रम युव मंच में वक्त है आपको रोजगार सूचना देने का। और आज की रोजगार सूचना के अनुसार BSNL में 100 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 4 जून से होंगे आवेदन शुरू। जी हां युवा साथियों, भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने 100 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में करेक्शन के लिए विंडो 4 जुलाई से 11 जुलाई तक खुली रहेगी और ये भर्ती है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पद के लिए। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, विद्युत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन विषयों में से किसी एक में इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री या समकक्ष योग्यता या MSc इलेक्ट्रॉनिक्स या MSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। कुछ विषयों में MTech की डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट न्यूनतम रहेगी 20 साल और अधिकतम है 31 साल। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। और फीस की अगर हम बात करें तो अनारक्षित वर्ग OBC EWS के लिए 2000 रुपये और SC ST PWBD के लिए आवेदन शुल्क रहेगा 1000 रुपये। और सैलरी की अगर हम बात करें तो 45,000 से 55,000 रुपये प्रति माह रहेगी और अन्य अलाउंस का लाभ भी मिलेगा। तो युवा साथियों, अगर आप भी इस क्षेत्र में यानी BSNL में जॉब करने के इच्छुक हैं

0: तो जरूर 4 जून से 3 जुलाई तक इस जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जी युवा साथियों, इस जानकारी के बाद अब कार्यक्रम युवा मंच में थोड़ा सा समय बचता है, एक गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं ये विज्ञापन।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी युवा साथियों, इस गीत के साथ ही अब आज का युवमंच कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपनी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा को दीजिए अनुमति। गुड इवनिंग दोस्तों।

श्रोताओं, भी आप युवमंच कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब से थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
2: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहचान बनाई है और आम देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांसो और गुजरात के केसर सहित आम की अन्य प्रमुख किस्मों की चर्चा की।
1: मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के तीन नगर निगमों में शानदार जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। राज्य में 17 मई को चार नगर निगमों में वोट डाले गए थे, जिनकी आज मतगणना की गई। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा ने कब्जा किया है, जबकि पालमपुर नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला नगर निगम में कुल 17 वार्डों में से भाजपा ने 11, कांग्रेस ने 5 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 वार्ड पर जीत हासिल की है। इसी प्रकार सोलन नगर निगम में भाजपा को 10 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 6 वार्डों में जीत हासिल हुई है। 1 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। मंडी नगर निगम में 15 वार्डों में से इस बार 14 वार्डों में ही मतदान हुआ। इनमें से 12 पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट गई है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी को 1 वार्ड पर जीत मिली है। उधर पालमपुर नगर निगम पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। शहर के कुल 15 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस और 4 वार्डों में भाजपा को जीत मिली है। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन सहित प्रदेश के 3 नगर निगम चुनावों में पार्टी की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने आज सोलन में कहा कि इस जीत से ये स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों को जाता है। उन्होंने भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए मतदाताओं का आभार जताया।
2: 3 नगर निगमों में, धर्मशाला, मंडी और सोलन में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है और विशेष रूप से सोलन में इतिहास हमने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 काउंसलर जिताकर, और जो 11वां काउंसलर है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है, मैं कह सकता हूं कि 11 काउंसलर जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सोलन की प्रबुद्ध जनता का, यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं का, और ये इस बात का द्योतक है कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार से परचम लहराएगी और जीत हासिल करेगी।
0: प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को हुए जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना भी आज की गई। हालांकि जिला परिषद और बीडीसी के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए गए, लेकिन भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रही हैं। प्रदेश में जिला परिषद की कुल 251 और पंचायत समिति सदस्यों की 1669 सीटों पर हुए मतदान की आज सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हुई। इनमें से अधिकतर सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और शेष बची सीटों पर भी मतगणना अंतिम चरण में है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: श्रोतो, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, 6:06 हुए। आप सुनिए सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम। श्रोतों, स्वागत है आप सबका आज के सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त पंकज कुमार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सुहाने सफर की इस गीत के साथ कि ये कहानी थोड़ी अजीब है ना हमारी, कि कहाँ से शुरू और कहाँ ख़त्म। पर शुक्रिया है जिंदगी के इस छोटे से सफर ने, यादें बहुत ही हैं हमें।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: तुम्हें याद है कि मैं अक्सर तुमसे कहता था, किसी के साथ होने का एहसास खास होता है जब कोई बिना कुछ कहे बस तुम्हें सुनता है, समझता है, तुम्हारी परवाह करता है। पर आजकल की दुनिया में ऐसा कोई नहीं करता है।

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जानता हूं कि मुझे भुला पाना इतना आसान नहीं, पर मेरा जिक्र भी नहीं ला सकते तुम अपने इन होंठों पर। तो वहीं छुपा के रखना मुझे, अपने दिल के किसी कोने में, अपनी यादों में, अपने वादों में।

शुक्रिया जो साथ दिया तुमने मेरा हमेशा, बस यूं ही मेरे साथ रहना। वो क्या है ना, इस ज़माने को समझना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, अगर तुम साथ हो तो ये थोड़ा आसान लगता है।

0: हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता स्वागत है तुहान सारिआं दा अज दे गल तुसां दे कार्यक्रम च कने अज दे कार्यक्रम च मैं हाँ तुहाने कन्ने तुहां दा रेडियो दोस्त पंकज कुमार। तो श्रोतो अज दे कार्यक्रम च अहां गल करनी विश्व तंबाकू निषेध दिवस दे बारे च। दिखो श्रोताओं हर साल 31 मई जो दुनिया भर च लाखों लोग एक एड़े भयानक संकट जो याद करने लई रुकते जे सालाना 80 लाख ते अधिक लोगों की जान ले लैंदा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस सिर्फ एक जागरूकता अभियान ही नहीं है, ये इस गल्ला की याद दिलांदा है कि तंबाकू का सेवन आज भी दुनिया भर च मृत्यु दे सब ते रोके जाने वाले कारणों च एक। चाहे तुहां धूम्रपान छोड़ने पर विचार करा दे, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर हो या सार्वजनिक स्वास्थ्य की परवाह करने वाले व्यक्ति हो, तंबाकू दे विनाशकारी प्रभाव कने इस दे मुक्ति पाने लई पाने वास्ते जे तरीके हैं उन्हां जो समझना आज पहले ते कई अधिक महत्वपूर्ण होई गया। दिखा 2026 च अहें इस महत्वपूर्ण दिना जो मनाई करा दे कने इस दा संदेश स्पष्ट है कि तंबाकू जो ना कहना पाना है जो कने जीवन जो हाँ कहना है। आइए जानते कि तंबाकू छोड़ना क्या जो बड़ा महत्वपूर्ण है कने तंबाकू दे स्वास्थ्य जोखिमों दे बारे च विज्ञान क्या कहंदा कने सब ते महत्वपूर्ण बात कोई भी व्यक्ति सफलतापूर्वक कने तंबाकू किन्ना छड़ी सकता। तो देखिए पहले जानने दे इस दे इतिहास दे बारे च। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 दा विषय क्या, 2026 दे विषय तंबाकू दे सेवन दे तत्कालीन कने दीर्घकालीन जे स्वास्थ्य परिणाम दे बारे च जागरूकता बढ़ाने कने साथ ही लोकां जो इस दे जो है छड़ने ताई व्यवहारिक जो रणनीतियां जई तिना जो सशक्त बनाने पर केंद्रित है। ये दोहरा दृष्टिकोण इस गल्ला जो स्वीकार करता है कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है कने लोकां जो जो है इस दे मुक्ति पाने ताई ठोस सफलता जो है सहायता दी चाहिए आवश्यकता होंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू महामारी दी और वैश्विक ध्यान आकर्षित करने ताई 1987 च विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना की। यह वार्षिक अभियान तंबाकू के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डालता कने इस दे सेवन जो कम करने ताई प्रभावी नीतियां दी वकालत भी करता। प्रत्येक वर्ष तंबाकू नियंत्रण च वर्तमान चुनौतियां दा समाधान करने लई एक नया विषय निर्धारित किया जाता। हर साल श्रोताओं इस जो है तंबाकू निषेध दिवस जो है हर साल जो है विषय जो है अलग अलग विषय लिए जाते कने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 द विषय के बारे अगर हम गल करें तो इसका विषय है आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। जी हाँ श्रोताओं, तंबाकू के सेवन के स्वास्थ्य पर बड़े भारी जो है जोखिम होंगे कने इन जोखिमों के बारे च हाँ तुहां जो कार्यक्रम च दसना, लेकिन इससे पहले अहां तुहां जो सुना दे एक गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: श्रोतें एक बार फिर स्वागत है तुहां दा आज दे गल तुसां दी कार्यक्रम च। आज दे कार्यक्रम च अहां गल करा दे विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 दे बारे च। तो चलो हुण जान दे कि तंबाकू दे सेवन ते स्वास्थ्य पर क्या क्या जोखिम हुंदे। दिखा तंबाकू सिर्फ धूम्रपान करने आले जो ही नुकसान नहीं पहुँचाता, ये मानव शरीर के लगभग हर अंग जो क्षति पहुँचाता। इस दे प्रभाव लगभग तुरंत ही शुरू हो जाते, कने समय के कन्ने कन्ने बढ़ते भी जाते। इसते स्वास्थ्य समस्याएं दी एक श्रृंखला जी उत्पन्न हो जाती, कने जो जीवन प्रत्याशा जो काफ़ी कम कर देंदी, कने जीवन गुणवत्ता जो भी घटाई देंदी। दिखा धूम्रपान शुरू करने दे कुछ ही मिनटा च इसते जे अल्पकालीन प्रभाव दिखने लग जाते, कने हृदय गति जे बढ़ जाती, कने रक्तचाप भी बढ़ जाता, कने रक्त च ऑक्सीजन दी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड लेने लग पाउंदी, कने इस प्रभाव ते हृदय प्रणाली पर जो है बड़ा दबाव पड़ता, कने शारीरिक क्षमता भी कम हो जाती। कई धूम्रपान करने वालों जो जो है सहन शक्ति च भी कमी, लगातार खांसी, कने स्वाद एवं गंध दी भी अनुभूति च कमी महसूस होंगी। कने इस दे अगर अहें दीर्घकालीन परिणामों की अगर अहें गल करिए, परिणाम कई अधिक गंभीर है। फेफड़ों का कैंसर, तंबाकू ते होने वाले सब ते कुख्यात बीमारी है, लेकिन एकमात्र खतरा नहीं है, क्रॉनिकल जे डिजीज भी इसते हो सकती, कने एम्फीसेमा हो सकता, कने क्रॉनिक बुकाइटिस फेफड़ों की जो है कार्यक्षमता जो धीरे धीरे जो है नष्ट कर देती। इसते सांस लेने भी जो है मुश्किल हो जाता, कने हृदय रोग जो है कने तिसने कने स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता। कने धूम्रपान करने वाले च धूम्रपान के कने जो है धूम्रपान न करने वाले की तुलना च करोनरी डिजीज जो हृदय का रोग जो होता की संभावना 4 गुना अधिक होंगी। तंबाकू उपयोगकर्ता च मूँह के कैंसर, मसूड़ों की बीमारी, दांतों का जो है चढ़ जाना, कने अन्य दंत समस्या की भी जो है काफ़ी अधिक होंगी। मूँह तंबाकू के जो है जहरीले रसायन के संपर्क च सारे तो पहले आंदा, कने बार बार संपर्क च आने का जो है सब तो अधिक प्रभाव इस पर ही होंदा। तो श्रोताओं अगे कार्यक्रम में चाहा तो हम दसना है कि हमारे शरीर च तंबाकू का प्रभाव जो है किन्ना पाँदा, कने पूरे शरीर च किन्ना पाँदा, फेफड़ियाँ ते लेने पैरों तक किन्ना इसका जो है प्रभाव अहां दे शरीर पर होंदा। लेकिन इससे पहले अहां तो हम सुनाना एक लोकगीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है तुम्हारा अज के गल तुसां दी कार्यक्रम च। अज के कार्यक्रम च अहां गल करा दे विश्व तंबाकू निषेध दिवस दे बारे च। तो चलिए गल कर दे कि अहां दे शरीर च तंबाकू दा प्रभाव किन्ना पौंदा, कने फेफड़ियां ते लेने पैरां तक किन्ना जहां जो परेशान करी सकदा। तो दिखा हालांकि तंबाकू दे सेवन दा सब ते व्यापक रूप ते जे पहचान अगर अहां कर दे ते फेफड़े दी बीमारी है, लेकिन इस ते होने वाला जहे नुकसान जहा श्वसन प्रणाली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तंबाकू एक प्रणालीगत जहा विषा कने शरीर दे लगभग हर एक अंग जो ए कने उत्कन जो ए जहे काम उत्कन दे काम काज जो ए जे बाधित करदा। अगर अहां आँखें की गल करिए तो लंबे समय तक तंबाकू दा सेवन मोतियाबिंद कने उम्र ते संबंधित मैकुलर डीजनरेशन दे खतरे जो भी काफ़ी हद तक बढ़ाई देंदा। जो वृद्ध वयस्क हैं तिना जहे दृष्टि हानि का भी प्रमुख एक कारण आ। कने गुर्दे की गल करिए तंबाकू रक्त वाहिका च नुकसान पहुँचाता, कने गुर्दे च रक्त प्रवाह जो भी कम करता, पुराने गुर्दे की बीमारी की प्रगति जो भी तेज करी सकता, कने उच्च रक्तचाप चाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कने शुगर यानी कि मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए भी ये बड़ा खतरनाक आ। कने रोग प्रतिरोग क्षमता जो भी यहाँ दी एक जो है कम करता, कने संक्रमण का खतरा बनाए रखता। तंबाकू रोग प्रतिरोग क्षमता जो काफ़ी कमजोर कर देता, कने जिससे शरीर संक्रमण दे प्रति जो है अधिक संवेदनशील जो है हो जाता, कने इसते बाय द सेवना ते जो है काफ़ी परेशानी जो है अहाँ जो उठानी पौती। तो देखिए कार्यक्रम च अहाँ उन गल करनी कि तंबाकू जो है किन्ना छड्डी सकते, कने इसते छड़ने दे क्या फायदे होंगे। तो देखा तंबाकू जड़ी भी लोग तंबाकू का सेवन करा दे किसी भी रूप च, तिना जो अहां तुहां कहेंगे कि तंबाकू छड़ी दिया तो एकदम से तंबाकू से नहीं छड़ी सकते, कने तिना जो अहां जो जागरूक करना पौना। तुहें भी अपने आस पास के लोगों जो से तंबाकू का सेवन कर दे किसी भी रूप च, तिना जो तुहां जागरूक करना, कने इस ताई तुहां जो जे बड़ी सारी जानकारियां कने उदाहरण तिना जो देने पौने, कने तिना जो तुहां जो है सारी ये जानकारी भी देनी कि इस दे छड़ने दे क्या प्रभाव होंगे, कने किन्या तुहां इस जो कर सकते। तो दिखा ये जो है सशक्त करने वाला सच है कि जिन्हें तुहां जो है कोई भी धूम्रपान करने या तंबाकू का सेवन जो है तुहां करा दे, अगर तुहां उस जो छड़ देंगे तो शरीर जो है ठीक होना शुरू हो जाता। ठीक होने की प्रतिक्रिया जो है बेहद जो है खुशी पहुँचाने वाली होंगी, यानी कि उल्लासजनक होंगी। तो दिखा अहां तुहां जो सारा दसना है कि पहले दिन क्या होना, कने अगर तुहां एक कंटिन्यू कर गया तो एक साल के बाद तुहां एक जो है क्या प्रभाव होने 12 घंटे बाद, कने कई साल अगर तुहें सेवन नहीं कर गए तो तुहां जो इस जो है क्या लाभ जो है होने। तो देखा 20 मिनट के भीतर अगर तुहां इस जो छड़ दे या नहीं कर दे तुहां धूम्रपान, तो 20 मिनट के भीतर ही हृदय गति कने रक्तचाप जो है स्वस्थ स्तर पर आई जाता, कने अगर हाँ 12 घंटे अगर तुहां धूम्रपान नहीं कर दे तो 12 घंटे बाद जो है खून से कार्बन मोनोऑक्साइड दस्तर जो है समान हो जाता, कने दिसते तुहां दे शरीर च ऑक्सीजन की आपूर्ति च सुधार होंदा। कने 2 से 12 सप्ताह की अगर हम गल करें तो इस दे भीतर रक्त संचार च सुधार होंदा, कने फेफड़े की भी कार्य क्षमता बढ़ जाती, शारीरिक गतिविधि करना थोड़ा आसान हो जाता। कने एक साल की गल करिए एक साल बाद हृदय रोग का खतरा धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों की जो है तुलना च अद्धा हो जाता, कने इसका असर दिखने लगता, त्वचा अधिक जो है चमकदार हो जाती, कने चिकनी हो जाती, कने बाल स्वस्थ कने रेशमी हो जाते, कने दांत कने नाखून पहले तो भी अधिक साफ कने मजबूत दिखने लगते। कने अगर हम गल करिए 5 से 15 वर्ष बाद दी तो स्ट्रोक का खतरा धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति दे बराबर हो जाता, कने समय दे कने त्वचा की उम्र बढ़ने दी प्रक्रिया बिच होंदी सै भी धीमी पड़ जाती कने उस कने जे बाकी जे चीज़ें दिखा बाल मजबूत हो जाते मसूड़ों की बीमारी कने त्वचा की चमक जो है फीकी नहीं पाती कने दीर्घकालीन समस्या की संभावना भी काफ़ी घट जाती। तो दिखा ये तो थी सारी जानकारी कि तंबाकू के बारे च कने विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज के दिन कने तुहें भी अपने आस पास के लोगों को यह सारी जानकारी दे सकते। तो चलिए हम सुनते कार्यक्रम की च एक लोक गीत।

श्रोताओं, भी आप गलत संधि कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का

नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पूरी फिल्म मेरी आंखें च बनी है या जने छड्डी
1: है अम्मा जी रेड़ी दे मैं माफी मंगदा नहीं कर गज ते बाद रेड़ी
0: पापी ता तू पक्का बनी आई दा बिया तू चल क्या कड़े शांति गए
2: हां जी बड़की आ गई आज फिर
0: बारा निकल भला देख बड़ियां गल्लां करा दी थी प्यागा तू
2: क्या होया
0: ए देख अपना पोत्र गदी कर तू तो तू
2: क्या कीता चिंटू ते
1: मैं कुछ नहीं किया दादी मैं तो खंगा दी गोलियां लेने गया था ना मेरा दूजा कान भी पटी था मिंजो प्लास्टर भी नहीं होने थी आए।
2: नहीं चिंटू आज तो जरूर कोई गाल है आज तो बड़की बड़ी गुस्से चाहे बड़की क्या होया क्या
3: हाँ ओ बड़की आज तो बड़े भारी भाई तत्ते मुड्डा जाए वो शांति हाँ, क्या बोला दी बड़की है बड़की क्या होया
0: ओ देख इस दिया जेबा देख नहीं क्या लिया जेबा च क्या खरीदी दाई नहीं
3: जेबां चे
0: और जेबां चे पाई लिया नहीं खरीदने देखो वाला क्या निकलना ही देखी से थे
3: ओ मुझे सवेरे मेरे ते 50 रुपये ले गया पे मैं पेन खरीदना कनतीस ऊपर लिखाना सूबेदार रा पोता है होना जेबां चे
1: हां दादा जी पेन ने
3: या 10 10 10
1: नहीं नहीं अंदर दिया पांदे हाथ पेन नहीं है बाहर देखी ले
3: ओ तू सुधरना नहीं सुधरना ओए 10 है
1: तू तोड़ी ता मारी ता मैं किसी काम
3: आ ओए ये क्या दिया गोलियां ओए ए पेन ना
2: ए बोतल तो मेनू कुछ देखी देखी लगदी है तुम्हारे कोल भी
1: पानी दी बोतल है पानी दी बोतल है
3: तू पानी खरीदी ने पिया ना बाहर जाए ने से कापी ओ शांति के कितना लग रहा है सवेरे
2: मैं नहीं देखा जी मैं तो क्या पर्स चो ले ले
3: पहले जा अपने पर्सा देख ओ थे कितने पैसे गायब है देख देख फटाफट दस मैं आज सीधा कर देना है
0: दूजे खिसे च है सुई पाई देनी
3: सुई
2: मेरे को दो ही थे 500 दे नोट हूं एक ही है
3: आओ 500 दी तू कापियां लेनी थी गोलियां सुई लाई थे कापी कुदी
2: बोतल देखो बोतल केड़ी है
3: शांति मत रोक मिंजो मत रोक बड़की अपने इस सोठुए दे ओ रेखा जो आज मैं सरिया लत्ता नीजे पतलियां कीतियां तो मेरा नाम भी सूबेदार सीताराम सुधरना कि नहीं सुधरना हुण है
2: दूसरा पानी मंगांदे थे ता नहीं शर्म आंदी थी ता ही बिगड़िया है मेरा मुंडा पुछो तो सही नहीं किथो सिखिया क्यों इदा किता
0: तू इस सामने पींदा था ओए ता वे बिगड़िया कने ए पैसे दिंदी थी कबल्ले इस जो कने सह भी देनी उपरा ते पे मेरा पोतरू बड़ा बांका कने उपरा ते जे तेरा मारा कुटाला तरीका ना ए भाव खरा निया आऊ पूछ देश ते ना होए बच्चा ए दस तिग्यो आदतां पहिया कुती ते मैं पहले बड़ा शरीफ था तू
1: अम्मा जी मैं फेल होई गया था अंग्रेजी अच सूबेदार दादा बड़ा भारी अंग्रेज मिंजो मार दे कुट दे ता मैं डरी गया और मैं फिर सोचिए किया दस गा
0: मोगा फेल हो या अंता क्या करना जीना छड़ी दे ना गंदी आदतां च पई आंदे भी आंदे
1: मैं डरी गया था मैं मरी जाना मैं नहीं बचना मैं नहीं रहना इस दुनिया च दादा जी
3: देखो दादी बोला दो मैं नहीं रहना यहाँ दुनिया च मैं अल्ले भी शांत नहीं हुई था वे ओ बड़की है तू पूछ तेरे को समझाई दे
1: चली आना कर छड्डी
2: चिंटू तेनू इन्ना कपाल के एड्डा बड्डा ता कीता भी तू इदा दे काम करे है दस सारिया तेरिया फरमाइशा पूरिया कीतिया असी साढ़े तो खाब हूँ ये है भी तू अफसर बनेगा सरकारी नौकरी करेगा तू इदा दे काम करने दस तुसी इनू समझाओ नहीं तो मैनू नहीं पता
0: ना वे एक ही पेपर च फेल हो यान ता क्या फिर पूरी उम्र नहीं पई दी वे पढ़ने कने पास होने जो है
3: वो बड़की है मिंजो ते भी पता नहीं पई है अंग्रेजी च फेल हो गदा है
0: बच्चा जो डर जरूरी हुंदा पर मोगा एडा भी आऊगा नहीं तैयार करी देना पे है गलत संगति जी पई आन कने अगर कोई समस्या होता है प्यारा ने समझानी थी ना जो 2-4 बार है
3: बड़की गाल गाल ते ठीक करा दी पर देख उन कोई भी या है तीस अगे अचानक जेड़ा पहाड़ टूटी पाओ तो जो या गुस्सा

श्रोताओं, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। अभी आप रोनका ग्रांदी कार्यक्रम सुन रहे थे। 7:45 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भीषण गर्मी में सावधानी बरतने और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने का किया आग्रह। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा का कब्जा, पालमपुर में कांग्रेस ने मारी बाजी। मुख्यमंत्री का दावा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को मिला भारी जनसमर्थन। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा, जनता ने भाजपा की नीतियों पर जताया भरोसा। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की भी आज हुई गणना, देर रात तक सभी परिणाम आने की उम्मीद। और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जनगणना कार्य में भाग लेने का किया आग्रह, कल से स्वगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवा सकेंगे लोग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में गर्मी के मौसम में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना और सोल कड़ी का सेवन करना उपयोगी है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल की

0: यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोल कालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है।
1: नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहचान बनाई है और आम देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 3 नगर निगमों में शानदार जीत हासिल कर ली है। राज्य में 17 मई को 4 नगर निगमों में वोट डाले गए थे, जिनकी आज मतगणना की गई। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा ने कब्जा किया है, जबकि पालमपुर नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी है। धर्मशाला नगर निगम में कुल 17 वार्डों में से भाजपा ने 11, कांग्रेस ने 5 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 वार्ड पर जीत हासिल की है। इसी प्रकार सोलन नगर निगम में भाजपा को 10 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 6 वार्डों में ही जीत हासिल हुई है। 1 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। मंडी नगर निगम में 15 वार्डों में से इस बार 14 वार्डों में ही मतदान हुआ। इनमें से 12 पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी को 1 वार्ड में जीत मिली है। मंडी के बहना वार्ड में लोगों ने स्थानीय विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया और यहां मतदान नहीं हो सका। उधर पालमपुर नगर निगम पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है। शहर के कुल 15 वार्डों में से 11 पर कांग्रेस और 4 वार्डों में भाजपा को जीत मिली है। कांगड़ा जिले में नगर निगम चुनावों के नतीजों पर अधिक ब्यौरे के साथ प्रस्तुत है हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: सप्ताह का सेमीफाइनल माने जा रहे नगर निगम चुनावों में प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मिश्रित संदेश सामने आया है। धर्मशाला में भाजपा की इस जीत को स्थानीय विधायक सुधीर शर्मा के प्रभाव और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि कांगड़ा की राजनीति में मुकाबला अभी भी बेहद रोचक और संतुलित बना हुआ है। मिशन 2027 की दिशा में दोनों दलों के लिए यह चुनाव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत साबित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
2: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भारी जनसमर्थन मिला है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में लगभग 2,400 कांग्रेस समर्थित पंचायत प्रधान व 2,300 उप प्रधान विजयी हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनावों के आधार पर पूरे प्रदेश का माहौल अपने पक्ष में होने के दावे कर रही है, जो गलत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम के चुनावों में लोग स्थानीय विधायक को देखकर वोट देते हैं। उधर मंडी नगर निगम में भाजपा की प्रचंड जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज मंडी में एक विजय रैली निकाली। रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया कि ये जनादेश प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ है और जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि तीन नगर निगमों के चुनावी नतीजे प्रदेश की बदलती राजनीतिक दिशा का संकेत है।
4: सबसे बड़ी बात तो है जो पार्टी के जो कार्यकर्ता ने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, पसीना बहाया, तब जाकर के ये जीत हुई है। लेकिन आज मैं इन सभी काउंसलर से इस बात के लिए भी आग्रह करूंगा, अगर कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया है, अब आपको पसीना बहाना है मंडी के बेहतरी के लिए, मंडी के विकास के लिए, हम मिलकर के काम करेंगे।
2: प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को हुए जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना भी आज की गई। इनमें जिला परिषद की कुल 251 और पंचायत समिति सदस्यों की 1669 सीटें शामिल हैं। हालांकि जिला परिषद और बीडीसी के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए गए, लेकिन भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रही हैं। तीन चरणों में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लगभग 81% मतदाताओं ने वोट डाले और मतदान को लेकर सभी आयु वर्ग के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन सहित प्रदेश के तीन नगर निगम चुनावों में पार्टी की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने आज सोलन में कहा कि इस जीत से ये स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों को जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना दो चरणों में की जाएगी और पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई के बीच चलेगा। इस दौरान मकान सूचीकरण, मकान गणना और जनसंख्या की गणना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल 1 जून से 15 जून तक लोग स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने लोगों से स्वगणना विकल्प का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चलाया जाएगा, जबकि प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना कार्य का दूसरा चरण 11 सितंबर से 30 सितंबर तक होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भीषण गर्मी में सावधानी बरतने और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने का किया आग्रह। धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगम पर भाजपा का कब्जा, पालमपुर में कांग्रेस ने मारी बाजी। मुख्यमंत्री का दावा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को मिला भारी जनसमर्थन। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा, जनता ने भाजपा की नीतियों पर जताया भरोसा। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की भी आज हुई गणना, देर रात तक सभी परिणाम आने की उम्मीद। और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जनगणना कार्य में भाग लेने का किया आग्रह, कल से स्वगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवा सकेंगे लोग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

श्रोतों, आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है, तो देखिए तम्बाकू छोड़ने की जो है सिद्ध रणनीतियां अपनाएं। तम्बाकू छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल संभव है। सही सोच, व्यवहारिक रणनीतियां और चिकित्सीय

0: सहायता के संयोजन से हर साल लाखों लोग सफल होते हैं। सबसे कारगर तरीका कोई एक उपाय नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव, सहयोग प्रणाली और निरंतर प्रयास का मिश्रण है। अगर आप ही तंबाकू की लत से पीड़ित हैं, तो इसका छुटकारा पाने के लिए आप कर सकते हैं धीरे धीरे सेवन कम। एकदम से चीजों को छोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए आपको धीरे धीरे इसका सेवन कम करना होगा। और मन में मजबूत वजह तय करें। अगर आप भी तंबाकू की लत से छुटकारा हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन में एक मजबूत वजह तय कर लेनी है, जिससे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सबसे पहले खुद से पूछें कि आप सच में इस आदत को छोड़ना चाहते हैं। दूसरों के कहने पर तंबाकू छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बात ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजने को हैं। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हवा महल में आइए आज सुनते हैं गंगा प्रसाद माथुर की लिखी और निर्देशित नाटिका मूड।
1: हाय हाय तो डाल, अरे तेरा सत्यानाश है, सारा दूध बह गया।
2: ओहो, क्या शोर मचा रखा है। अरे भाई शन्नो, ए शन्नो, हद हो गई। एक घंटे से कोशिश कर रहा हूँ मगर चार लाइन नहीं लिख सका। मजाल है कि कोई काम इत्मीनान से करने दिया जाए। दो घड़ी की शांति मयसर नहीं है इस घर में।
1: शांति शांति शांति, ये भी कोई घर है जहाँ हरदम मरगट का सा सन्नाटा छाया रहता है? जरा कहीं खटका हुआ कि पर ले।
2: शन्नो
1: शन्नो नहीं, शांति शांति है मेरा नाम, समझे?
2: अरे समझ गया।
1: क्या समझ गया?
2: अरे यही कि तुम्हारा नाम शन्नो नहीं शांति है। और ये
1: क्या? अरे कहते कहते रुक क्यों गए? और क्या?
2: कुछ नहीं, बस यही कि हमारे घर वाले भी कैसे कैसे नाम रखते हैं, सुनते ही हंसी आती है।
1: क्या मतलब?
2: अरे मतलब यही कि जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता उसका नाम रखा जाता है नैन सुखलाल, और जो सारी जिंदगी एड़ियां घिस घिस कर मरता है उसका नाम होता है चैन सुखदास। कुछ समझी?
1: मैं कुछ नहीं समझी।
2: अब देखो ना, मेरा नाम है अमीर चंद, है ना?
1: हाँ हाँ है।
2: और तुम्हारा?
1: शांति
2: शांति शांति और अमीर चंद।
1: इसमें हंसने की क्या बात है जी?
2: अरे हंसने की बात नहीं है तो और क्या है। अब देखो ना, ना तुम मैं अमीर हूँ और ना तुम। खैर छोड़ो, मेरा नाम अमीर चंद है ना, मगर जेब में भुनी भांग भी नहीं। मेरा नाम होना चाहिए था फकीर चंद या गरीब चंद। और तुम्हारा?
1: मेरा?
2: तुम्हारा नाम अगर शांति देवी की जगह क्रांति देवी होता तो कितना जश्ता।
1: हाँ ठीक है, ना जाने तुम कवियों को क्या बैर होवे है अपने घर वालों से। कितना ही अच्छा नाम रखे माँ बाप, मगर ये उसे बदल कर ही छोड़ेंगे। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे क्या ये बताओ कि चीख चीख कर आसमान को क्यों सर पर उठा रहे थे?
2: मैं चीख रहा था? भाई वाह, ये भी खूब रही, उल्टा चोर कोतवाल को डांट।
1: आए लो, सुना इनकी बातें, अब मैं चोर भी हो गई। और आपको देखो, बड़े आए हैं कोतवाल बनकर, सुबह से शाम तक दफ्तर में लोहा कूटते हैं और समझते हैं अपने आप को कोतवाल।
2: शन्नो शन्नो, मेरा मतलब है शांति जी, लगी फिर तुम वही उल्टी सीधी बातें करने।
1: उल्टी सीधी की क्या बात है, नहीं पीटते रहते तुम दिन भर दफ्तर में लोहे से लोहा?
2: अरे ठीक है ठीक है ठीक है, तुम एक टाइपिस्ट को लोहा कूटने वाला कहकर मुझे चिढ़ा सकती हो, मगर देख लेना देख लेना, एक दिन इसी टाइपिस्ट के नाम का साहित्य की दुनिया में तहलका मचा होगा। आज के इस लोहा कूटने वाले का लोहा सारे संसार को मानना पड़ेगा, समझी? मगर छोड़ो, तुम क्या समझोगी, भैंस के आगे भी बजाने से भी क्या फायदा है। अब तो तुम भगवान के लिए यहाँ से जाओ और मुझे कुछ लिखने पढ़ने दो।
1: अजी लिखो खूब, काले करते रहो कागज, मैंने कौन सी तुम्हारी कलम पकड़ रखी है? हाँ नहीं तो, एक तो खुदावास दी, उस पर कभी मुझे चोर बना रहे हैं तो कभी मुझे भैंस।
2: ओहो, बड़ी गलती हो गई शांति देवी जी, जो मैंने तुम्हें आवाज दी, अब मुझे उसके लिए माफी दे दो, मेरा मूड खराब मत करो।
1: हाँ हाँ मैं तो जानू हूँ मुझसे बात करने में तुम्हारा मूड खराब ही होता है, पर कान खोल कर सुन लो, मेरे भी काले कुत्ते ने नहीं काटा कि बेकार में तुमसे अपने भेजे के ठीकरे करूंगी। मैं जा रही हूँ पड़ोस में धनों की माँ के पास, तुम बैठे रहो इन कागजों में सर्दी।
2: हाँ हाँ बाबा जाओ, जरूर जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सुनो,
1: कहो क्या है, अब क्या बात है?
2: अरे मेरी कोई चिट्ठी विट्ठी तो नहीं आई?
1: नहीं। अरे हाँ याद आया, मेरे पिताजी के पास से एक आदमी आया था।
2: तुम्हारे पिताजी के पास से?
1: जी हाँ, हमारे गांव से।
2: अरे आया होगा, मुझे इससे क्या मतलब है, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरी कोई चिट्ठी तो नहीं आई। तुम भी अजीब हो, कहो खेत की तो सुने खलियान की।
1: खलियान का क्या जिक्र है जी, मैं भी तो खेती की बात कर रही हूँ।
2: खेत की बात, क्या मतलब?
1: पिताजी ने कहला भेजा है कि आजकल चने की फसल है, खेती लहला रही है, दो चार रोज के लिए गांव आ जाओ और खेतों से ताजे ताजे चने तोड़कर खाओ।
2: खेतों से ताजे ताजे चने तोड़कर खाओ, वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। अरे तुम्हारे पिताजी ने क्या मुझे बैल भैंस बकरा ऊंट समझ रखा है कि खेत खेत चने चरता फिरूं मैं?
1: अरे मैं कहती हूँ आपको खेतों में चने तोड़कर खाना अच्छा नहीं लगता?
2: बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे खेतों और चनों से कोई दिलचस्पी नहीं है, बख्शो मुझे, मुझे लोहे के चने ही चबाने दो। अरे मेरी किस्मत में तो यही लिखे हैं।
1: आपको तो हर वक्त अपनी किस्मत का ही रोना रहता है, खैर आप जाए या ना जाए मैं तो जरूर जाऊंगी, वरना पिताजी नाराज हो जाएंगे।
2: हाँ हाँ हाँ, शौक से तुम जरूर जा सकती हो।
1: और हाँ, मुझे याद आया, पिताजी ने उस आदमी के हाथ असली घी की एक हांडी और ताजे गुड़ की दो भेलियां भी भेजी है।
2: ओहो, मैं कहता हूँ तुम्हारे पिताजी का इरादा क्या है, आखिर चाहते क्या है वो? मुझे बनिया की दुकान खुलवानी है जो रोज रोज ही असली घी और गुड़ भेजते रहते हैं।
1: इसमें क्या बुरी बात है?
2: बात बुरी हो या भली हो इससे बहस नहीं है, पर उन्हें लिख दो कि मैं असली घी खाने का आदि नहीं हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ वनस्पति घी खाया है और मरते दम तक यही खाता जाऊंगा, असली घी भेज भेज कर मेरी आदत खराब न की जाए। असली घी खाने से मेरा तो गला खराब हो जाता है, ये गुड़ की भेलियाँ, अरे तौबा तौबा, उनकी तरफ देखने से तो मुझे मतली आने लगती।
1: हाय हाय, इतना अच्छा गुड़ तुम्हें कभी नसीब भी हुआ है? जरा चलकर तो देखो जी, तुम्हारे शहर में तो ढूंढे से भी नहीं मिलेगा इतना अच्छा गुड़।
2: अरे मेरा दिमाग खराब नहीं है श्रीमती जी के शहर में मैं जाकर गुड़ ढूंढता फिरूं।
1: ओहो, तुम तो चौमुखे चले हो।

0: कब कहा कि बाजार में जाकर गुड़ ढूंढो? मैंने तो एक बात कही थी, पर तुम तो लगे हैं लड़ने को ही बैठे हो। ना जाने पिताजी की भी क्या ममता की रग फड़के हैं, जो तुम जैसे नाशुक्रों के लिए इतनी अच्छी चीजें भेजते हैं।
1: भगवान,
0: अब उन्हें कोई कैसे समझाए कि उनकी मोहब्बत की यहाँ पर ये कदर होती है।
1: हो हो हो, अब ये शुरू हो गए ना टसवे बहने। अरे उनकी मोहब्बत से कौन कमबख्त इनकार कर रहा है, लेकिन मोहब्बत जाहिर करने के लिए ये असली घी, ये ताजा गुड़, ये तिल के लड्डू, गन्ने के रस की खीर, मैं कहता हूँ इन सब चीजों की क्या जरूरत है। अरे सच कहता हूँ शन्नो रानी, तुम्हारे पिताजी के लिए मेरे दिल में जो इज्जत है, जो एहतराम है।
0: बस बस, मैं सब जानती हूँ, बंद कीजिए ये किस्सा नहीं तो।
1: हाँ, मेरा भी यही ख्याल है श्रीमती जी, कि इस गुस्से को यहीं खत्म कर दिया जाए। क्यों खामखा मेरा भी मूड खराब हो और तुम्हारा भी।
0: देखो जी, एक बात आज तुमसे मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, ये तुम अपना मूड चाहे खराब करो चाहे अच्छा, पर मेरे मूड के खराब होने की बात मत किया करो।
1: मूड?
0: भगवान ना करे कि मेरा मूड खराब हो।
1: मूड? अरे मूड नहीं शन्नो रानी, मैं मूड की बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम मूड को क्या समझो? अरे अगर ये समझ लेती कि मूड क्या चीज है तो अच्छे ही दिन ना होते।
0: अजी नहीं समझती हूँ तो समझा दो ना, अगर पढ़ी लिखी नहीं तो क्या, इतनी कम अकल तो नहीं हूँ कि कोई चीज समझाई जाए और मैं समझ भी ना पाऊँ।
1: अच्छा, अच्छी बात है, तो बैठो आज तुम्हें समझा ही दूं कि मूड क्या होता है।
0: हाँ हाँ, समझाओ कि मूड क्या होता है।
1: मूड मेरा मतलब है, मूड मूड दिमाग की वो स्थिति होती है कि अगर वो बिगड़ जाए तो।
0: अजी यही तो मैं कह रही थी, मूड दिमाग के बिगड़ने का अंग्रेजी नाम है। तुम जिसे अंग्रेजी में मूड खराब होना कहो, हम उसे अपनी भाषा में मूड बिगड़ना कहे।
1: नहीं नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, तुम पूरी बात तो सुनती नहीं हो। मूड को अगर आसान और सरल शब्दों में तबीयत का रुझान या मन की वो स्थिति कह सकते हैं कि जब हम एकाग्रचित होकर अपने मन को बड़ी लगन और शौक के साथ किसी एक कार्य विशेष की ओर केंद्रित कर लें।
0: ओहो,
1: अब जैसे फर्ज करो तपती दोपहरी में हम तुम ऊपर बरसाती में बैठे हो, मैं तुम्हें एक टक निहार रहा हूं और तुम पसीनों में तर बतर बैठी अपनी धोती के पल्ले से हल्के हल्के अपने को हवा कर रही हो, तभी मैं कहूं शन्नो जी तुम इस वक्त मुझे बड़ी लुभावनी लग रही हो, जी चाहता है तुम्हारी पेशानी पर चमकने वाले पसीने के इन बिल्लौरी मोतियों की माला गूंथ कर तुम्हें पहना दूं। तुम्हारे पल्लू के हिलाने से जो भीनी भीनी हवा निकल रही है, इसमें आओ हम तुम मुड़कर आसमानों को छू जाए तो जानती हो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मैं इस वक्त मूड में हूँ, रोमांटिक मूड।
0: कौन समझदार आदमी तुम्हारी बातें सुनकर नहीं कह देगा कि इनका मूड फिर गया है।
1: ओ, अभी तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा साथ रहा तो जरूर एक दिन ये मूड फिर जाएगा। जाओ बाबा जाओ, तुम नहीं समझ सकोगी कि मूड क्या होता है। मैं हारा तुम जीती महारानी।
0: मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम कुछ समझा ही नहीं सकते हो। रही बात मूड फिरने की, वो तो भगवान ही जाने है कि किसका मूड फिरेगा, तुम्हारा या मेरा। पर तुम अपना मूड अच्छा करते रहो, मैं तो कुछ दिन के लिए अपने पिताजी के पास गांव जाकर रहूंगी।
1: हाँ जरूर जाओ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है श्रीमती जी।
0: पर खाली हाथ थोड़े ही जा सकूं हूँ, कुछ रुपए पैसे का भी तो बंदोबस्त होना चाहिए। लाओ निकालो रुपए, मैं आज ही चली जाऊंगी।
1: लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है श्रीमती, यही कोई बस 5-7 रुपए पड़े होंगे, इसमें पूरा महीना निकालना है।
0: ये तो मैं जानती हूँ, मेरे नाम के तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं होते, पर अगर मुझे भेजना है तो रुपयों का इंतजाम करना ही होगा।
1: अरे इंतजाम तो मैं सब कर दूं, लेकिन तुम करने दो तब ना। अब सुबह से बैठा हूं, एक लाइन नहीं लिख सका। अरे अगर तुम मुझ पर कृपा करो भवानी, तो रुपयों के ढेर लगा दूं।
0: अच्छा, तो क्या जो तुम लिखने जा रहे हो उसके रुपए मिलेंगे?
1: जी हाँ, वरना मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है जो कागज काले कर रहा हूँ।
0: अच्छा तो लो, मैं जाती हूँ, तुम लिखो, पर जब रुपए मिले तो मुझे गांव जरूर भेज।
1: अरे जरूर भेज दूंगा, जरूर भेज दूंगा, लेकिन इस वक्त तो जाओ यहाँ से।
0: जाती हूँ, पर हाँ, कब तक आएंगे रुपए, कब तक भेजोगे मुझे गांव?
1: अरे बस जरा एक पब्लिशर फंस जाए।
0: ये कब तक फंसेगा तुम्हारा पब्लिशर?
1: पब्लिशर बस ये उपन्यास पूरा हो जाए, समझ लो पब्लिशर।
0: कब तक पूरा होगा ये उपन्यास?
1: बस बस बस, शुरू होने की देर है, पूरा हुआ समझो।
0: पर कब शुरू करोगे?
1: अरे कोई अच्छा सा थीम मिल जाए तो शुरू कर दूंगा।
0: पर ये अच्छा सा थीम कब तक मिलने की उम्मीद है तुम्हें?
1: थीम की बात तो बस वही मूड पर है शन्नो रानी, जब जरा मूड आया के थीम

0: पूजा
1: मूड फिर वेलकम बखत मूड।
0: अरे मूड नहीं शन्ना जी, मूड मूड।
1: मैं सब जानती हूँ, जिसे तुम अंग्रेजी में मूड कहो हो उसे हम अपनी भाषा में मूड मूड कहते हैं।
0: ओ हो, अरे अब तुम्हें कैसे समझाऊं?
1: अजी बस समझा लिया, जो बात तुम खुद नहीं समझते हो मुझे क्या समझाओगे। अच्छा मैं चली रसोई में, वरना कहोगे मूड खराब।
0: अरे हाँ जाओ, वरना सचमुच मेरा मूड खराब हो जाएगा।
1: मूड नहीं मूड।
0: अरे हाँ बाबा, मूड मूड मूड, तुम जीती मैं हारा, मूड नहीं।

मूड गंगा प्रसाद माथुर की लिखी और निर्देशित ये नाटिका अभी आप सुन रहे थे। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, भी अभी भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने

0: की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीत कर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open Badminton Tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
5: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
4: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Ayya, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
5: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
4: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
5: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
4: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinderveer Singh and Animesh Gujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony, ancient copper plates from the Chol period were returned to India. The Prime Minister praised conservation efforts under the Namami Gange initiative, citing the successful rescue of a gangetic dolphin trapped in a canal in Uttar Pradesh with the help of India's first Ganga Dolphin Rescue Ambulance. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged consumption of traditional summer beverages. Referring to mangoes, a favorite summer fruit, Prime Minister Narendra Modi praised the efforts of farmers, saying Indian mangoes are now reaching global markets from villages across the country. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar president arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power Manohar Lal today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. On the occasion, the Union Minister distributed loan checks and QR-coded credit cards to street vendors to promote digital transactions and economic self-reliance. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained, and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. Chief of Defence Staff CDS General N.S. Raja Subramani today said the armed forces have consistently demonstrated professionalism and operational decisiveness in safeguarding the nation's interest. He said they remain committed to protecting India's sovereignty and territorial integrity. General Subramani was addressing the media after assuming charge as the country's new CDS.
6: We pay homage to our brave hearts whose valor, sacrifice and dedication to the nation continue to inspire us. We are committed to the welfare of our veterans and Veer Naris. I assure the citizens of India that the armed forces will continue to serve the nation with dedication, courage, honor, and professionalism.
4: Admiral Krishna Swaminathan today assumed charge as the 27th Chief of the Naval Staff. He succeeds Admiral Dinesh K. Tripathi. Addressing the media on the occasion, Admiral Swaminathan said the Indian Navy remains

0: चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला।
1: बहुत

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में कार्य करते थे।

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है दोस्तों। फिल्में जो भी हों लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल का

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।

राज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

राज खोसला ने अपनी शैली से हटकर, टाइल से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म 16वां साल।

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।

राज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।

राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में ली।

वो तो यकीनन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताजा बनाए रखे।

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

श्रोताओं, यह विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं, आप सुनिए दिलां दे मीत पहाड़ी गीत कार्यक्रम।

प्यार सह एहसास है जेड़ा दूरी च भी नजदीकियां दा अनुभव करांदा। ए एक इतना मिठा एहसास है जेड़ा आहने सौगी चलदा।

जी श्रोताओ, ता अज इस कार्यक्रम च कितियां आहा प्यार भरियां गल्लां कने सोगी आहा सुने लोक गीत कने इसी न सोगी लैंदे अनुमति। नमस्कार, राम राम।

श्रोताओं, भी आप दिलांदी मीत पहाड़ी गीत कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 MHz पर।

तो श्रोताओं, स्वागत है आप सबका आज के रोमांटिक फिल्म गीतों के सुनहरे सफर चांदनी रातें कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके रेडी दोस्त अक्षय कुमार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सफर की इस गीत के साथ। सुनो, ये मोहब्बत का पहला से एहसास बहुत खास होता है ना, कुछ समझ नहीं आता, बिन मतलब के मुस्कुरा देते हैं और किसी को सोचकर अक्सर कहीं खो जाते हैं, किसको सोचकर ये आँखें नम हो जाती हैं, पता नहीं ये सब क्यों होता है, पर शायद पहली पहली मोहब्बत में ऐसा ही होता है।

तुम मिले तो ऐसा लगता है कि कोई मिल गया सच में, जिसकी तलाश थी इस दिल को, शायद वो या कुछ उससे भी बढ़कर। हाँ कुछ तो है, पता नहीं क्या, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, शायद पिछले जन्म में। क्या तुम्हें याद है ये सब?

हाँ कुछ तो है। दो दिल मिल रहे हैं पर किसी को खबर नहीं। सुनो, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही अपने दिल में छुपा कर रखोगी क्या? सच कहूँ, मुझे भी पसंद है तुम्हारा एक हिस्सा होना, हर पल तुम्हारे संग होना।

अब इस मोहब्बत में हर कोई मजबूर हो ही जाता है, अब क्या करें, ये दिल ही ऐसी चीज़ है ना। अब इस इन सब में इस दिल का भी तो कोई कसूर नहीं। देख, कौन कब किसको क्यों और कैसे पसंद आ जाए, क्या ये कोई बता सकता है क्या? नहीं ना, इसीलिए तो मुझे तुम पसंद हो।

हाँ जानता हूँ कि नहीं सुन पा रही हो तुम मुझे, पर यह भी पता है कि महसूस तो तुम्हें होता होगा ना। मैं भी हवा का एक झोंका बनकर छू जाऊँगा तुम्हें वो प्यारा सा एहसास के लिए।

जी हाँ श्रोताओं, लेकिन जो भी आपके खास हैं उनके पास हमेशा रहिए एंड उनसे आप सब शेयर करिए।

जी हाँ श्रोताओं, कभी कभी कुछ ना कहना भी काफी होता है किसी अपने खास को समझने के लिए। लेकिन वो आपका खास है, इसलिए उसे कभी जुदा नहीं होना, हमेशा उसकी परवाह करनी है।

तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आप सुन रहे थे अपने रेडी दोस्त अजय कुमार के साथ। हमेशा खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और जी हाँ, हमेशा अपने दिलों में मोहब्बत को जिंदा रखिए।

0: हम सुन रहे थे रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: शुद्ध रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर समाप्त होते हैं। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।